एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 15 मई सन 2006।

0: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब अगले कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं मानते। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज और प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। सुनिए आज का भाग 189, 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मिलिंद सबनिस। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2 बज

30 मिनट से सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे सुनिए पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी है जीवन एक सरल रेखा, रेखा। लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी, संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तराने नए पुराने। 6 बजकर 35 मिनट पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7 बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार। लेखन है वीरेंद्र कश्यप का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर। इन्हीं की प्रस्तुति। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए और 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10 बजकर 30 मिनट पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ का भाग 189।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कोश फूले, कुमुदिनी जिये सकुच रही, भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी छटा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए।
2: आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक

0: ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं, हम उनको रणछोड़ कहते हैं, हम उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हम उनकी रासलीला में शामिल हो सकते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाज़त देते हो कि हम उनके साथ कर सकें। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने कहा क्या धोखा हो गया, तो हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे, और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया, उसके बाद अब आप राजा बन गए, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूँ, अब तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊँगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे
1: जी।
0: तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर, किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं, मित्र बन के हमारे साथ खेलते हैं। लीजिए ऐसा ही एक भजन आपको सुनाता हूँ।
2: वो काला एक बांसुरी वाला बांसुरी

0: सचमुच हम बांसुरी बजैया के रंग में जैसे डूब गए थे, खो से गए थे। अनूप जी, हमें बताइए कि इस भजन में किस राग की चर्चा थी?
1: कोई प्योर राग इसमें हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, मिक्स है
0: जी। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों की रचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें।
1: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन हमने, मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने गाई थी। इस भजन के साथ साथ जो व्याख्या होती है वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है
0: जी।
1: कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी। सोचा था कि कन्हैया आएंगे, ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई है, समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे ही जरा सा माखन मुख से गया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी।
0: क्या बात है,
1: कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हों तो हम कैसे चुप रह सकते।
0: क्या बात,
1: बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास और यशोदा पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या, और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

समय का वर्णन हुआ, भोर और सांझ। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास हो।

अब इसमें एक नई व्याख्या सुनिए। यशोदा कहती है, कन्हैया तुमने हमेशा माखन ही चुराया है, तुम्हारा नाम पड़ गया माखन चोर। अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, वो सब तो तुम नहीं चुराते, तो ये माखन से इतना प्रेम क्यों है? कन्हैया बता रहे हैं यशोदा को कि उनको माखन इतना प्रिय क्यों है।

0: वाह, बहुत सुंदर, भाव विह्वल कर देने वाला भजन आपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और हम सब की आंखें नम है इस समय।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत की है आशीष झा। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
1: अभी आप आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

श्रोताओं नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम में जिसका नाम है नमस्कार झालावाड़। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं, आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद साजिद। दोस्तों, लगता है कि आज गर्मी पूरे शबाब पर है। सूरज अभी अभी पूर्व दिशा से प्रकट होने का प्रयास कर रहा है। लाल नारंगी किरणें खेतों में बचे पड़े सरसों और गेहूं के डंठलों पर अवशेषों पर सुनहरी आभा को और चमकदार बना रही हैं और गर्मी का एहसास करा रही हैं। पेड़ों पर चोंच खोले पक्षी कभी चहचहा रहे हैं तो कभी पानी की आस में इधर उधर देख भी रहे हैं। हल्की हल्की गुनगुनी हवा के साथ क्यारियों में खिलते मोगरे की महक सुबह के इस वातावरण को और भी मदहोश बना रही है। नीला नीला आसमान साफ है, लेकिन गर्मी है कि अभी से अपना असर दिखाने के लिए बेताब है। मित्रों, गर्मी की तपिश के बीच भी परिवार की छांव कितनी ठंडक देती है हम सभी जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे परिवार की अहमियत की, क्योंकि आज विश्व परिवार दिवस है। गर्मी से बचाव और राहत के उपायों पर भी बात करेंगे, साथ ही आपके अपने शहर झालावाड़ की ताज़ा तरीन खबरों और गतिविधियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत

सुविचार के साथ। आज का सुविचार है मित्रों कि अगर जानना है सफर कितनी दूर है तो असंभव से टकराना होगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता कोई सड़क का दूसरा किनारा नहीं जिसे आसानी से छुआ जा सके। वो एक चोटी है जिसकी ऊंचाई तभी मालूम पड़ती है दोस्तों जब हम असंभव की दीवार

जी हाँ दोस्तों, सफलता कोई सड़क का दूसरा किनारा नहीं जिसे आसानी से छुआ जा सके। वो एक चोटी है जिसकी ऊंचाई तभी मालूम पड़ती है दोस्तों, जब हम असंभव की दीवार से टकराते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, जब हम वो काम करते हैं जिसे लोग पागलपन कहते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि सफलता कितनी दूर है और कितनी करीब भी। जब हम असंभव को चुनौती देते हैं तो हमारी सोच फैलती है, क्षमताएं विकसित होती हैं और बड़े सपने भी साकार होते हैं। असफलता फिर असफलता नहीं रह जाती बल्कि सीढ़ी बन जाती है। इसलिए रुकना मत, दीवार से टकरा जाना, चोट भी खा लेना, गिरना और लेकिन फिर उठ जाना, क्योंकि हर टक्कर में तुम न सिर्फ सफलता की दूरी नाप रहे होते हो बल्कि खुद को नया रूप भी दे रहे होते हो। असंभव से टकराने वाला दोस्तों कभी हारता नहीं, वो तो सफलता को भी अपने कदमों में लाकर खड़ा कर देता है।

मित्रों, सुबह के ऐसे सुहाने वक्त में जब आप अपनों के साथ या अपने परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो रेडियो के पास बैठकर हमारे कार्यक्रम भी सुन रहे हैं और आपका भाई वहां है, आपकी बहन है, आपके माता पिता या आपके परिवार के और भी सदस्य आपके पास हैं दोस्तों, तो वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं। और ये बात दर्शाती है दोस्तों कि आपका परिवार कितना स्नेहिल है। गर्म हवाएं जरूर चल रही हैं लेकिन परिवार का प्यार इन हवाओं को भी पार कर रहा है। और किसी ने कहा भी है ना दोस्तों कि जिंदगी का असली मजा परिवार के साथ ही होता है, अपनों के साथ ही होता है, क्योंकि परिवार ही वो जगह होती है जहां गर्मी के दोपहर में भी ठंडक का एहसास हमें मिलता है, जहां दुख बढ़ जाता है और खुशी कई गुना हो जाती है। मित्रों, परिवारों की अहमियत हम सभी जानते हैं और इसी अहमियत को समझने और समझाने के लिए ही आज के दिन प्रत्येक वर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का यह दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार सिर्फ रिश्तों का समूह नहीं है बल्कि जीवन की सबसे पवित्र नींव है। दोस्तों, इस साल की इस दिवस की थीम है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण। आज हम इसी भावना के तहत बात करेंगे दोस्तों कि कैसे परिवार हमें असमानताओं के खिलाफ मजबूत बनाते हैं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की गोद में सिर रखकर सो रहा है, पिता की थकी हुई आंखों में मुस्कान। जब वो घर लौटता है, दादी की कहानियां जो रात को सितारों की तरह चमकती हैं, भाई बहन की छोटी छोटी झगड़े और लुका छुपी छुपा हुआ दोस्तों बहुत ही अटूट बंधन है। ये परिवार है जहां दर्द बढ़ जाता है और खुशी दोगुनी हो जाती है। परिवार हमें जड़ें देता है, जड़ें जो तूफान में भी हमें खड़े रहने का हौसला देती हैं। आज की भागती दौड़ती दुनिया में जहां लोग करियर, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत सफलता के पीछे भाग रहे हैं, परिवार पीछे छूट से जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सफलता का असली स्वाद तभी आता है जब उसे परिवार के साथ बांटा जाए। माता पिता की त्याग की मिसाल देखिए, कितनी रातें मां जागकर बेटे की परीक्षा की तैयारी कराती है, कितनी बार पिता अपनी थकान भूलकर बच्चे का सपना पूरा करने के लिए बेहद प्रयास करता है, अतिरिक्त मेहनत करता है। और दादा दादी की नाना नानी की कहानियां जो हमने सभी ने सुनी है हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं। ये सब असमानताओं के बीच भी हमें मजबूती देती हैं। विश्व परिवार दिवस हमें याद दिलाता है दोस्तों कि परिवार का आकार मायने नहीं रखता, प्यार मायने रखता है। असमानताएं हैं लेकिन प्यार उन्हें पार कर जाता है। परिवार ही वो पहला स्कूल होता है दोस्तों जहां बच्चा प्यार, सम्मान, करुणा सीखता जाता है। अगर परिवार मजबूत होता है दोस्तों तो समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर राष्ट्र भी मजबूत होता जाता है। तो दोस्तों, इस विश्व परिवार दिवस पर अपने परिवार के साथ समय बिताइए, फोन रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, बैठिए, साथ बात कीजिए, पुरानी यादें ताजा कीजिए, बच्चों को बताइए कि वो कितने खास हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। बुजुर्गों को भी गले लगाइए और उनके अनुभव भी सुनिए सुनाइए, क्योंकि परिवार वो दीपक है जो अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाता है, वो छांव है जो देता है, वो सहारा है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो परिवार में सामंजस्य असली ताकत देता है कि असली खुशी पाने के लिए, यानी कि कुछ पाने की नहीं बल्कि देने की जरूरत होती है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें दोस्तों कि हम अपने परिवार को मजबूत बनाए रखेंगे, असमानताओं के खिलाफ लड़ेंगे, बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। क्योंकि जब

1964 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में जन्मे द्विवेदी जी का जीवन त्याग, तपस्या और अटूट समर्पण की मिसाल है। धनाभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के में पले द्विवेदी जी की औपचारिक शिक्षा सीमित रही, लेकिन उनकी जिज्ञासा और स्वाध्याय ने उन्हें विद्वान बना दिया। रेलवे में तार बाबू की नौकरी करते हुए भी साहित्य की साधना अपनी जारी रखी। 1903 से 1904 में उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का संपादन का काम भी संभाला। 200 रुपये की अच्छी नौकरी छोड़कर मात्र 20 रुपये मासिक वेतन पर इस काम को अपनाना उनके त्याग और दूरदृष्टि को दर्शाता है। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। भारतेंदु युग के बाद हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक का सूत्रपार आपने ही किया। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य और गद्य की प्रमुख भाषा बनाया। भाषा को शुद्ध, अनुशासित और परिमार्जित किया। व्याकरण, विराम, चिन्हों और शुद्धता पर जोर देकर उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक रूप भी प्रदान किया। उनकी आलोचना मौलिक थी। उन्होंने अधकचरे साहित्य की आलोचना की और लेखकों को स्वस्थ, उद्देश्यपूर्ण रचना की प्रेरणा दी। काव्य मंजूषा, कविता कलाप, सुगंध साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श जैसी रचनाओं से उन्होंने साहित्य को राष्ट्र चेतना का वाहक बनाया। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों को मार्गदर्शन देकर उन्होंने नई पीढ़ी भी तैयार की। संस्कृत, मराठी और पाश्चात्य साहित्य के ज्ञान से हिंदी को समृद्ध किया। देश और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान गहरा था। हिंदी नवजागरण के प्रमुख स्तंभ के रूप में उन्होंने साहित्य को मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्र जागरण का माध्यम भी बनाया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनकी लेखनी ने भारतीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की नींव रखी, जिससे लाखों भारतीयों में एकता का भाव जगा। उनकी पत्रिका सरस्वती ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागृति का कार्य किया। द्विवेदी जी का जीवन संदेश है, मित्रों की परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। गरीबी में पले एक व्यक्ति ने पूरे हिंदी जगत को नई दिशा दी। आज हम हिंदी को विश्व स्तर पर मजबूत देखते हैं तो द्विवेदी जी की दूरदर्शिता का फल हमें नजर आता है। आइए आज उनकी जयंती पर हम संकल्प करें कि हिंदी को शुद्ध रखेंगे, साहित्य को सार्थक बनाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। आकाशवाणी परिवार की ओर से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हृदय से श्रद्धांजलि।

मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 मई है और इस पावन तिथि पर हम स्मरण करते हैं एक ऐसे महान आत्मा का जिन्होंने हिंदी भाषा को आधुनिक युग की चेतना दी, साहित्य को अनुशासन प्रदान किया और राष्ट्र जागरण की ज्योति जलाई। और ये शख्सियत है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 15 मई 1800

मित्रों, इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि समय समय पर इस कार्यक्रम में हम आपको राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के बारे में जानकारी। आपको बता दें कि यह राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक प्रौद्योगिक कार्यक्रम है। यह 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर

एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में आयोजित होगा। यह आयोजन कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नवाचार, निवेश, तकनीकी उन्नयन और किसान सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा आयोजित ये मीट विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादकता बढ़ाने, सस्टेनेबल फार्मिंग और निर्यात उन्मुख कृषि को बढ़ावा देने पर जोर देगा। इसके पिछले संस्करण 2016 और 2017 में आयोजित हुए थे, लेकिन 2026 का संस्करण पहले से कहीं बड़ा और वैश्विक स्तर का होगा। इसके मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, डिजिटल टूल्स, प्रिसीजन फार्मिंग, एआई ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और मूल्य संवर्धन से जोड़ना, स्टार्टअप उद्यमियों और निवेशकों को कृषि क्षेत्र में अवसर प्रदान करना, वैश्विक सहयोग बढ़ाना और राजस्थान को एग्रीटेक हब के रूप में स्थापित करना और किसान वैज्ञानिक नीति निर्माता संवाद को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में 50,000 से 75,000 तक किसान, पशुपालक, विशेषज्ञ, निवेशक और उद्योग प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके लिए राज्य भर में ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, राजस्थान की कृषि चुनौतियों को देखते हुए यह मीट जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी फसलें, डेयरी और हॉर्टिकल्चर पर विशेष फोकस करेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर किसान एग्जीबिटर और विजिटर रजिस्ट्रेशन खुले हैं। ट्रेवल प्लान के लिए आरटीडीसी की मदद भी ली जा सकती है। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 एक आयोजन नहीं है दोस्तों, बल्कि राजस्थान की कृषि क्रांति की शुरुआत है। ये किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को निकट लाएगा। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्टर करें और इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाएं। मित्रों, इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। आइए अब हम आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी दे दें।

हमारी आज की इस सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर, शाम 6:05 पर और नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम के तुरंत बाद यानी प्रातः 7:30 पर।

प्रातः 8:15 पर सुनिएगा स्वास्थ्य विषयक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। आज के इस कार्यक्रम का विषय होगा हाइपरटेंशन के दुष्प्रभाव, कारण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आरडी माथुर, एसआरजी अस्पताल झालावाड़। अगर हाइपरटेंशन को लेकर यानी उच्च रक्तचाप को लेकर कोई भी सवाल इस कार्यक्रम में आप डॉक्टर आरडी माथुर से पूछना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं। फोन नंबर होंगे 2325 और झालावाड़ के एसटीडी कोड 07432। प्रसारण समय प्रातः 8:15। दोपहर 12 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: युवा जगत के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5 बजे। इसमें चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती। नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर भी बातचीत होगी। करंट अफेयर से हमारे युवा साथी रूबरू होंगे और चिराग जल रहे हैं युवा डायरी के अंतर्गत गोपाल चौरसिया से अनूप शूर की बातचीत हमारे युवा साथी सुनेंगे। और सौभाग्य योजना की जानकारी इस कार्यक्रम में होगी। आज का इतिहास होगा, रोजगार सूचनाएं होंगी, तो युवा साथी सुनिएगा कार्यक्रम युवाणी शाम 5 बजे। किसान साथियों के लिए शाम 7 बजे कृषक चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर चर्चा होगी और गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन की चुनौतियां और समाधान विषय पर मुर्गी पालक आदित्य सिंह गांव गुवाड़ी से बजरंगलाल मीणा की बातचीत होगी। फसल बीमा योजना के बारे में भी इस कार्यक्रम में किसान साथी जानेंगे और जानेंगे समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रमों के बारे में। और रात 9 बजे सुनिएगा गीत संगीत की विभिन्न विधाओं का कार्यक्रम सब रस। श्रोताओ, ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय और मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।
1: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
0: और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम शबाब पर है और यह मौसम हमें चेतावनी दे रहा है कि झालावाड़ में पारा तेजी से बढ़ रहा है, लू की आशंका, इसलिए जरा सावधान रहें, सतर्क रहें, बच्चों बुजुर्गों का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते हैं तो सर पर गीला कपड़ा या टोपी रखें, बीच बीच में आराम भी करते रहें और ORS का घोल भी पीते रहें और बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और पानी पीना ना भूलें, खूब पानी पिएं और परिवार में एक दूसरे की देखभाल भी करते रहें। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम अब यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नई सूचना और नई ऊर्जा के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, गर्मी से सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार, नमस्कार झालावाड़।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में ये दो गाना दोस्ताना फिल्म से, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत नसीब से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: किशोर कुमार की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत जॉनी मेरा नाम तुमसे, इंदिवर के कलम्बा देसी गीत की तरह बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कुछ नहीं रहेगा नफरत करने

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। कार्यक्रम अभी जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। अगले गीत के साथ जल्द हाजिर होंगे।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अब बचाव संभव है।
5: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
4: सही समय पर। अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
5: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
4: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
5: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इस ब्रेक के बाद फिल्म संगीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कालिया फिल्म का गीत। शब्द रचना है मजरू की, संगीत आर डी बर्मन का और आवाजें आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत दोस्त फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज किशोर कुमार की।

0: किशोर कुमार की आवाज में भी आप दोस्त फिल्म का गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रभात का आज का अंक हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। UAE के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने

0: संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली।

0: है। यह तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य।

0: जनसत्ता के शब्द हैं, ये बहुमत की तानाशाही चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य विषयक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेहत कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद साजिद। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसे चुपके से लाखों लोगों की जान लेने वाला साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरडी माथुर साहब। डॉक्टर आरडी माथुर बहुत ही सीनियर चिकित्सक हैं, काफी अनुभव आपके साथ है। डॉक्टर आरडी माथुर, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो श्रोता, इस कार्यक्रम में आप सीधे डॉक्टर आरडी माथुर से हाइपरटेंशन के कारण, स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव, लक्षण और बचावों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। देर किस बात की, अपने मोबाइल को थोड़ी सी तकलीफ दीजिए और डायल कीजिए हमारे फोन नंबर 232593 और झालावाड़ के स्टडी कोड 07432। और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर माथुर से जानते हैं कि हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है।
1: जनरल पब्लिक में हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है कि साहब ब्लड प्रेशर की बीमारी है। यूजुअली लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, और हम जब रेगुलर बीपी नपवाते हैं तो नॉर्मल तो 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 आता है।
0: जी जी,
1: अगर इससे अगर ज़्यादा आता है तो वो ब्लड प्रेशर में आ जाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है और प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो उसके कई कारण हैं।
0: जी जी,
1: और
0: जी,
1: उससे पेशेंट को बहुत सारे नुकसान होते हैं, और जाने अनजाने में पेशेंट को लंबे टाइम तक पता ही नहीं लगता कि उसको ब्लड प्रेशर है। और होता क्या है कि उसको इजी वे में लेता है कि मेरा सर दुख रहा है तो नॉर्मल हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है, और हाथ पैर दुख रहे हैं या घबराहट हो रही है तो ऐसे ही हो जाती है, मौसम की वजह से हो जाती है, जबकि वो बीपी की वजह से हो रही होती है। और बीपी जब पकड़ में आता है, वो रूटीन एग्जामिनेशन में कोई चिकित्सक और बीमारी के लिए कोई मरीज आता है और वो बीपी नापता है तो पता लगता है कि उसको ब्लड प्रेशर है, फिर भी मरीज यूजुअली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसको बीपी है और वो ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं होता है। हम उसको जब तक कन्विंस नहीं करें कि समझाते हैं कि भैया बीपी है, इसका ध्यान से इलाज कराना पड़ेगा, फिर वो रेगुलर लेना पड़ेगा, जिंदगी भर लेना पड़ेगा, और प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आज हमारा विषय है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। तो इसको लेकर के अगर आप भी कोई प्रश्न डॉक्टर आरडी माथुर

0: आपसे करना चाहते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अभी फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 232593 और झालावाड़ के स्ट्रीट कोड 07432। और लगता है कि कोई श्रोता इस वक्त हमसे जुड़ चुका है। नमस्कार, कार्यक्रम है आपकी सेहत। आपकी आवाज हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। जी, अगर थोड़ा आपके मोबाइल का जो माउथ पीस है उसे थोड़ा नजदीक ला करके आप बात करेंगे तो हमें आपकी आवाज ठीक प्रकार से मिल पाएगी। अपना सवाल दोबारा करें।
1: ये 70 साल की उम्र में जो कोई होता है ना,
0: जी, अच्छा 70 साल की आपकी उम्र है और आप जानना चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए।
2: साहब आपका बीपी तो वही नॉर्मल रहना चाहिए जो जवान का रहता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो बीपी आपका थोड़ा कम ज़्यादा रहे। यूजुअली नॉर्मल बीपी 120-80 होता है। अपन इसकी रेंज अगर ऊपर वाले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बढ़ाएं तो मैक्सिमम 140 और नीचे वाले की 90, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा है तो वो ब्लड प्रेशर है आपका
1: 150
2: है तो फिर वो बीपी हायर साइड में है। इसको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी आपको। कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? कहाँ से?
1: यहीं से कॉलेज चली
0: गई। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ से इनका ट्रीटमेंट चल रहा
2: है। हाँ, तो रिपीटेडली चेक कराएं और नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है ये देखना जरूरी होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हमारे दूसरे श्रोताओं से भी हमारा निवेदन है कि अगर आप ब्लड प्रेशर को लेकर के कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बहुत ही अनुभवी चिकित्सक आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, डॉक्टर आरडी माथुर साहब। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वही 232593 और झालावाड़ के स्टेट कोड 07432। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन श्रोता का प्रश्न था कि हमारी उम्र 70 साल है और हमारा बीपी कितना होना चाहिए, तो बीपी के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर ब्लड प्रेशर व्यक्ति का कितना रहना चाहिए?
2: ऐसा है साहब, इसकी एक रेंज होती है।
0: जी जी,
2: आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से लेकर के 140 तक रहे जब तक तो मान्य है। हालांकि बुक्स तो इसको 34 तक ही कहती है, 134।
0: जी जी,
2: पर 140 तक हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नियर अबाउट 65-64 से लेकर के 70-80 तक अलाउड है।
0: जी जी जी,
2: पर अगर अब ज्यादा तो फिर वो नुकसानदायक हो जाता है।
0: और इसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार का हो सकता है
2: बीपी? एक तो असेंशियल होता है जो खुद की तरफ से होता है जिसका कोई कॉज पता नहीं होता।
0: जी जी,
2: इडियोपैथिक कहलाता है वो। दूसरा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बीपी के अंदर कई कॉजेज हो जाते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, थायराइड टॉक्सिकोसिस है, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा है। ये कई बीमारियां हैं जिससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। इवन प्रेगनेंसी में भी एक्लेम्शिया होता है, उसके अंदर भी बीपी बढ़ जाता है।
0: जी जी जी,
2: सूजन हो जाती है और प्रोटीन यूरिया हो जाता है। तो अपने को इन सब चीज़ों का केयर रखनी पड़ेगी और पहचानना पड़ेगा कि किसके कारण है। जब हम इसको ट्रीट करते हैं
0: जी जी
2: तो
0: जी,
2: हम पहले तो असेंशियल के हिसाब से ही देखते हैं कि क्या हाल है, और नॉर्मल रूटीन मेडिसिन और उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करके, नमक कम करा के, घी तेल चिकनाई भारी खाना तली हुई चीजें बंद करा के उसको देखते हैं। नहीं होता है तो अपन हायर मेडिसिन में जाते हैं एंड इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर अपन मालूम करते हैं कि उसको क्या बीमारी है प्राइमरी जिसकी वजह से सेकेंडरी बीपी हुआ है।
0: जी जी जी जी, तो प्राइमरी जो ब्लड प्रेशर है या सेकेंडरी स्टेज पर जो ब्लड प्रेशर है, तो इन दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है?
2: प्राइमरी का तो कोई कॉज पता नहीं लगता है।
0: जी जी,
2: जो एसेंशियल है उसमें कॉज पता नहीं लगता है। सेकेंडरी में कॉज हो जाता है
0: जी,
2: भाई आपको थायरोटॉक्सिकोसिस है तो उसकी वजह से अगर बीपी ज्यादा है, धड़कन तेज है, तो वो एक कारण हो गया। तो हमें उस कारण को ट्रीट करना पड़ेगा, थायरोटॉक्सिकोसिस को ठीक करना पड़ेगा
0: जी,
2: तो बीपी नीचे आ जाएगा। आपका अगर लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है तो अपने को उसको कम करके ठीक करना पड़ेगा
0: जी।
2: तो इस तरीके से हमारे को रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा हर चीज का।
0: जी जी जी जी, यानी बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि हमें बिल्कुल मॉनिटर करके रहना पड़ेगा।
2: यस, और आपको रेगुलर अच्छे ढंग के फिजिशियन को चेकअप करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। प्लस
0: जी जी जी,
2: आपको जब भी आपको बीपी डायग्नोज हो जाए तो हर 15 दिन या मिनिमम 1 महीने में आप जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि रोज उम्र बदलती है तो बीमारी बदलती है तो ट्रीटमेंट बदल जाता है।
0: जी जी जी डॉक्टर,
2: इसलिए रेगुलर चेकअप
0: बहुत जरूरी है। एक और श्रोता लाइन पर है। नमस्कार, आपकी सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: सर नमस्कार, जल रहा है, गोपाल लाल चोर से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ गोपाल जी, अपना प्रश्न रखिए।
3: सर नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: सर मेरा सर ये सर के आजकल क्या है कि टेंशन तो रहती

0: पड़ोसी को दे दो।
1: हाँ तो सर इसके लिए कोई गोली है क्या, कभी कभी चक्कर आने लग जाते हैं तो कोई गोली खा सकते हैं घरेलू?
0: ऐसा है, अगर आपको चक्कर आते हैं जब तो कारण निकालना पड़ेगा, चक्कर का क्या कारण है। देखो आप काम क्या करते हो और क्या उम्र है आपकी?
1: मेरी सर उम्र तो 58 साल है सर।
0: हाँ तो आप स्ट्रेस में रहते हो आप घर के अंदर?
1: और सर मेरा किराना का व्यवसाय है और मेरे को कोई ब्लड प्रेशर वगैरह शुगर वगैरह कुछ भी नहीं, मैंने जांच करा रखी सर।
0: जांचों पे मैं
1: कभी कभी आते हैं सर चक्कर, ऐसे रोज नहीं आते, डेली नहीं आते हैं।
0: नहीं चक्कर बीपी की वजह से तो कभी नहीं आते, अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा बीपी होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके अलावा आपको वीकनेस भी हो सकती है, खून की कमी भी हो सकती है, घबराहट भी हो सकती है, आपके कलेजे में भारीपन भी हो सकता है, कई चीज़ें इसके साथ में एसोसिएटेड होगी, खाली चक्कर तो आएंगे नहीं। और रहा सवाल आपकी डाइट का, तो वो देखें आपकी खाना खुराक क्या है उसकी वजह से हो, और एक गोली चक्कर की बाद में अगर कुछ भी नहीं हो तो एक चक्कर की गोली खा सकते हैं आप।
1: तो कौन सी सर इसका नाम बता दीजिए आप?
0: वर्टिन के नाम से आती है गोली, वो ले लें दिन में 3-4 दिन के लिए, और अपना बीपी नपवाएं ढंग से अच्छी जगह। ठीक है सर,
2: बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, झालरापाटन से आपने कॉल किया, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और अक्सर कार्यक्रमों से जुड़ते रहते हैं। और डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के खतरों को देखते हुए भी हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने का हमें ज़रूरत क्या पड़ती है और इसके क्या उद्देश्य हैं?
0: देखो साहब वैसे तो हर बीमारी इंसान के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो चिंता हो, चाहे दर्द हो, या घबराहट हो, या भूख लग रही हो, वो सब चीजें ऊपर वाले ने दे दी है
2: जी, हाँ जी,
0: तो अपने को उसका निवारण तो करना ही पड़ेगा। अब यूं है कि जनता अपनी इसके लिए जागरूक नहीं है
2: जी, जी,
0: तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई डे मना करके पब्लिक को जागरूक करें और उसको बुला करके समझाएं कि तेरे को क्या बीमारी है या हो सकती है
2: जी, जी,
0: तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें सारे लोग,
2: जागरूकता के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और अगर हम हमारे देश की बात करें भारत की, तो यहाँ पर हाइपरटेंशन की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रसित है?
0: बहुत सारी प्रतिशत है साहब, इसके तो क्या गिने आपको
2: जी,
0: कई
2: जी,
0: लोग तो बिना काउंट किए हुए पता ही नहीं है कि उनको बीपी है
2: जी जी,
0: काउंटेड तो हॉस्पिटल्स में आते हैं, बाकी बचे हुए जिनको बीपी है उनको पता ही नहीं है
2: जी जी,
0: और उनकी मौत लकवे से या किसी और चीज से हो जाती है तो पता ही नहीं लगता है
2: जी, यानी बहुत भारी तादाद
0: में है साहब
2: जी जी।
0: 35 से 40 साल के ऊपर तो बीपी नपवाना ही चाहिए। मैं अगर कोई पेशेंट बुखार का भी आता है
2: जी
0: तो मैं उसका बीपी जरूर नापता हूँ अगर वो 35-40 का है तो, क्योंकि बीपी निकल जाता है।
2: अक्सर हमने देखा भी है कि किसी भी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हम किसी भी बीमारी को लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहले वो बीपी इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं और आपका बीपी चेक करते हैं।
0: इसका कारण है ना साहब, 35-40 तक आदमी खूब घी तेल चिकनाई खा चुका होता है
2: जी जी,
0: तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस की वेसल्स में हो जाती है, वेसल्स हार्ड हो जाती है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है
2: जी,
0: तो उस हिसाब से अपने ट्रीट करना होता है।
2: और डॉक्टर साहब क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है या सिर्फ इसको केवल नियंत्रित ही किया जा सकता है?
0: ऐसा है साहब, ठीक तो जब होगा जब आप रूटीन आपका सही करेंगे, जैसे खाने में, पीने में, एक्सरसाइज में, घूमने में, घी तेल चिकनाई बंद करने में, और उसका कोई रूटीन कॉज है तो उसको खत्म करने
2: जी,
0: में
2: जी, जी।
0: वेट लॉस करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा, आपकी ओबेसिटी है तो उसको आप खत्म करेंगे जब जाके आपको आराम मिलेगा, वेट आप अगर 10 किलो कम करते हो तो आपका काफ़ी कुछ बीपी कम हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यूं जिंदगी भर का साथ है।
2: यानी इसको सिर्फ कंट्रोल में आप रख सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। अगर आपका बीपी अगर बढ़ने लग जाता है और हाइपरटेंशन बढ़ी भी रहती है तो आप इसको सिर्फ नियंत्रित करके रह सकते हैं।
0: ऐसा है साहब, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कहे कहे लाइफ स्टाइल को चेंज किया
2: जी जी,
0: उनका वेट भी कम हुआ, वो अब रेगुलर चेकअप कराने आते हैं पर बीपी उनका नॉर्मल रहता है
2: विदाउट
0: मेडिसिन।
2: क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। तो श्रोताओं आप भी इस कार्यक्रम में डॉक्टर आर डी माथुर साहब से ब्लड प्रेशर को लेकर के, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के, यानी हाइपरटेंशन को लेकर के कोई भी प्रश्न रख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और फ़ोन नंबर आपको पता है और नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, फ़ोन नंबर हैं 232593 और झालावाड़ के स्टीडी कोड हैं 07432। डॉक्टर साहब अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने बताया था कि 35 की उम्र के बाद आपको बीपी चेक करा लेना चाहिए और एक रूटीन इसका बना लेना चाहिए, तो कुछ बातें ऐसी भी हैं कि बच्चों में भी बीपी देखने में आ जाता है, युवाओं में भी हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: गांव वालों का तो वो घी खाने में ही विश्वास करते हैं
2: जी जी,
0: हालांकि एक्सरसाइज तो होती है, पहले तो खूब होती थी अब नहीं होती है, लोग अब ट्रैक्टर चला लेते हैं, पहले हाथ से हल चलाते थे
2: जी जी,
0: तो उनकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, तो ये तो ध्यान देने योग्य बात है। और रहा सवाल बच्चों का, तो ये ज्यूवेनाइल एनोमली होती है उसकी वजह से ये बीपी आ जाता है
2: जी जी,
0: और कहीं इनहेरिटेंस होती है उसकी वजह से भी बीपी आ जाता है
2: जी जी,
0: तो अपने को अकॉर्डिंगली नजर रखनी होती है

0: मदर फादर को अगर बीपी रहा है तो बच्चा टाइम से अपना चेकअप कराता रहे,
1: जी जी
0: अपनी केयर करे, यही चीज डायबिटीज में है और यही बीपी में है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपकी सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शायद श्रोता का संपर्क हमसे कट चुका है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि लोगों को बीपी हो जाता है, युवा भी इसके शिकार हो जाते हैं और बच्चे भी हो रहे हैं, और कारण जैसे कि आपने बहुत से बताए, और एक कारण आपने बताया कि तेल, चिकनाई, ज़्यादा खाना। पुराने वक्त की बात करें या हमारे बुज़ुर्गों से जो हमने सुना है कि वो घी ऊपर से डाल करके चम्मच, दो चम्मच, 50 ग्राम, 100 ग्राम घी तक भी उखा जाते थे, तो वो इस चीज़ से कैसे बचे रहते थे?
0: ऐसा ऐसा उनके उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे तो उसको डाइजेस्ट कर जाते थे, वो मेटाबोलाइज हो जाता था सारा। आज की तारीख में हम स्कूटर पे और मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, वो पैदल
1: जी
0: जाते
1: जी
0: थे,
1: जी जी,
0: वो कई किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। नंबर दो, उनकी एज 50-60 से ऊपर नहीं जाती थी।
1: जी जी,
0: आज की तारीख में एज जारी 80-90। और मेरे पास तो आज भी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 94-95 के, जो चल के आते हैं।
1: जी जी,
0: तो ये तो सब कंट्रोल्ड है ना अपना इस टाइम पे, साइंस का डेवलपमेंट। जी हाँ
1: जी हाँ, देखिए हो सकता है उस वक्त ऐसी सुविधाएं ना हों, लोग डॉक्टर्स के पास भी बहुत कम पहुंचते थे, और आज मिसाल वो ये देते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, जबकि सबसे बड़ी बात है कि लाइफ स्टाइल इंसान की सही होना चाहिए। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम है आपकी सेहत।
2: जैसे अचानक उल्टी आना,
1: पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आपने कॉल किया है ये भी बताइए।
2: अच्छा, मैं झालरापाटन से बोल रहा हूँ, कार्तिक नगर पश्चिम से।
1: नाम आपका?
2: कालूलाल।
1: कालूलाल जी, क्या पूछना चाहते हैं? अब पूछिए आप डॉक्टर साहब से।
2: जैसे कभी कभी अचानक मेरी तबीयत खराब होती है तो 24 घंटा तक मुझे होश नहीं रहता है।
1: क्या तबीयत खराब होती
2: है? जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, जैसे कोई लोहे की चीज के हाथ अड़ता है, जैसे कोई करंट झटका दे, ऐसे होता है।
0: आपने कभी अपना बीपी नपवाया है?
2: बीपी नपाया था, एक आधी बार नपाया।
0: एक आधी बार नपाया। आप कितने साल के हैं?
2: मेरी उम्र है 62 वर्ष।
0: तो सर, 60 साल के बाद तो सरकारी रिटायर कर देती है, तो आपको अपने समझना पड़ेगा कि रेगुलर चेकअप कराना होता है, अपने शुगर की जांच कराएं, उसकी बीपी की जांच कराएं, लिपिड प्रोफाइल की जांच कराएं अपने, और उसके अलावा आप मिर्च मसाले कम करें। आप बहुत तेज़ खाते हैं, गुस्सा भी आप बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें आ जाती है, भूखे भी रह जाते हैं कई बार। सही है ना कालूलाल जी?
2: हाँ, राइट राइट।
0: तो इसीलिए मैं तो बिना देखे बता रहा हूँ कि आप क्या क्या करते हो, वो वाली बात है, घरवाली से लड़ना बंद करो।
2: बहुत आइडिया लगाया आपने।
1: देखिए, बहुत अनुभवी चिकित्सक हैं डॉक्टर आरडी माथुर साहब, और कहते हैं ना कि बंद लिफाफे में मजमून पढ़ लेते हैं, तो आपका मजमून डॉक्टर आरडी माथुर साहब ने पढ़ लिया है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें, आप काफ़ी कुछ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और डॉक्टर आरडी माथुर साहब कार्यक्रम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
3: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
4: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
3: सही समय पर। अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
4: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है।
3: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
4: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
1: आपके इस सेहत कार्यक्रम के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको एक बार फिर बता दें श्रोताओं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय है हाइपरटेंशन, शरीर पर इसके दुष्प्रभाव, कारण और बचाव के उपचार। और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आरडी माथुर साहब, काफ़ी अनुभवी डॉक्टर आप हैं, और काफ़ी अच्छी बातचीत आपके साथ चल रही है, श्रोताओं को जानकारियां भी मिल रही हैं। तो अगर आप इस विषय को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें फ़ोन ज़रूर करें, हमारा फ़ोन नंबर है 2325 और झालावाड़ के STD कोड 0743। तो डॉक्टर साहब, अभी जिस श्रोता का, मांगीलाल जी का, कालूलाल जी का कॉल जो कार्यक्रम में शामिल हुआ था, काफ़ी कुछ बातें आपने इनके बारे में बताई, जैसे कि एक ज्योतिष बताता है तो कई कारण इसमें निकल करके सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन के ऐसे ही और मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?
0: मुख्य कारण साहब, लिपिड प्रोफाइल आपका, घी में चिकनाई वगैरह ज्यादा हो जाती है, थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे मैंने बताया, पेटेंडक्टस आर्टियोसिस बताया, एरोटिक रिग्रेजिटेशन है, एक सब कार्डियक लीजेंस हैं जो मरीजों को, जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आएंगे, ये डॉक्टरों की

0: टीए की वो पहचाने और उसका इलाज करें।
1: जी जी
0: सही
1: जी
0: बात तो ये है। और कोई भी अगर फियोक्रोमोसाइटोमा होता है तो वो भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बीपी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। जब तक आपकी जांच अगर आप नहीं कराएंगे डॉक्टरों से ढंग से तब तक पता ही नहीं लगेगा आपको कि क्या हो
1: जी
0: रहा है।
1: जी जी जी
0: तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपना लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज कर लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप रूटीन आपका खाने में पीने में इसमें ध्यान रख लें, आपकी रूटीन एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ोसी को दे दें खुद ने रखें तो उससे आपको काफ़ी आराम रहेगा। और रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कारण आपने कई बताए लेकिन एक चीज़ और कि आपने जिक्र किया था नमक का।
0: हाँ, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट। वो हम ट्रीटमेंट पार्ट में बताते हैं कि सबसे पहले जैसे डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है तो उसमें सोडियम रेस्ट्रिक्शन करवाते हैं हम।
1: जी जी जी।
0: और उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। पर इसमें ध्यान रखना होता है कि आपने सोडियम रेस्ट्रिक्शन तो करा दिया पर टाइम टू टाइम सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपको कराने होते हैं।
1: जी जी।
0: उसमें क्या होता है कि सोडियम कम हो जाता है तो भी आदमी परेशान हो जाता है।
1: जी जी जी।
0: तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मरीज सोचता है मेरी बार बार जांच क्यों करा रहे हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अगर इस तरह सोचेंगे तो काम गड़बड़ है। बाकी जैसा चिकित्सक कहे वैसे रेगुलर जांच करवा लें और अपना ट्रीटमेंट करा लें।
1: हाँ, क्योंकि नमक एक ऐसा तत्व होता है जिसके बिना हम खाना, तो भारत में तो हम खाना खा ही नहीं पाते हैं, और जब लोगों को नमक की पाबंदी बताई जाती है तो वो इस चीज़ से कतराते हैं।
0: नहीं तो इसमें मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि रोटी में तो डालना बंद कर दो।
1: जी जी।
0: और सब्जी में आधा कर दो।
1: जी।
0: और डाइट में अगर डायबिटीज़ नहीं है तो फ्रूट्स और ये इंक्रीज कर दो, सलाद आप अपना इंक्रीज कर दो।
1: जी जी जी।
0: तो आपको खाना अच्छा लगेगा।
1: जी जी जी जी। और मोटापे को भी हाइपरटेंशन से जोड़ करके देखा जाता है, तो मोटापे और हाइपरटेंशन में क्या संबंध है?
0: बहुत भारी संबंध है साहब। जितना मोटा होगा बीपी आने की 100% संभावना होगी।
1: जी जी जी।
0: चारों तरफ से जो आदमी मोटा है उसकी डाइट भी मतलब भारी वाली होती है।
1: जी जी।
0: इसकी वजह से मोटापा बनता है, फैट उसके आ रहा होता है। तो ब्लड वेसल्स जो आपके होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल और ये घी चिकनाई सब जमा होती रहती है, तो वेसल्स जो है हार्ड हो जाते हैं तो बीपी उनका बढ़ता है। और नंबर दो, जितना मोटा होगा उसकी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज सब रूटीन एक्टिविटीज खत्म हो जाती
1: जी
0: है।
1: जी जी।
0: वो सिर्फ बैठा बैठा खाता है और वो सेठिया बन जाता है।
1: जी
0: तो
1: जी।
0: उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। होता क्या है कि जब तक हम इसको कम नहीं करेंगे डाइट मतलब अपने रेगुलर उसमें ट्रीटमेंट पार्ट में अपने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, वेट लॉस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं लोगों को बताता हूँ मोटापा कम करने के लिए कि घी तेल चिकनाई भारी खाना तली हुई चीजें आलू चावल शक्कर मिठाई ये बंद करें, शक्कर बंद करें और 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग चेक करें।
1: जी जी।
0: भूखे पेट खाना खाने के बाद नहीं। खाना खाने के बाद तो आप भली टहलें पर तेज तेज नहीं जाना है।
1: जी जी।
0: तो आपका वेट कम हो जाएगा साहब।
1: तो बहुत बड़ा कारण मोटापा इसीलिए है क्योंकि आप खाते रहते हैं और बैठे रहते हैं। और तनाव को हाइपरटेंशन से किस प्रकार से जोड़कर आप देखते हैं, क्या कारण है तनाव का?
0: अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें होती है सर उसमें।
1: जी जी।
0: सारे हार्मोनल भी चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस आती है, घबराहट भी आती है उसमें, बीपी भी आता है। तो अगर आप अपना स्ट्रेस पड़ोसी को दे दें या खुद नहीं रखें या जैसे भी उसको अवॉइड करें तो ठीक रहता है। उसमें क्या होता है कि आपको अभी मैं झपड़ मार दूँ तो ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, आपका बीपी बढ़ जाएगा।
1: जी जी जी।
0: जबकि आपको कोई बीपी की बीमारी नहीं है पर एक बार तो बढ़ ही जाएगा। आप मोहल्ले में अगर कहीं झगड़ा हो गया और तनाव बढ़ गया तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। ये एक स्पेशल चीज है जो ऊपर वाले ने मैनेज करी हुई है। तो हम इन चीजों को अवॉइड करें। चीज खो गई तो खो गई, टेंशन नहीं लें। टूट गई तो टूट गई, टेंशन नहीं लें।
1: जी जी जी।
0: सास की बेटी ने आपको कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, उसको सुन लें।
1: जी जी जी। यानी सुनना सीखें।
0: हाँ, सुनना सीखें।
1: जी जी। एक और श्रोता लाइन पर है। नमस्कार, कार्यक्रम है आपकी सेहत।
2: जी नमस्कार सर, डक से कवि अशोक सोनी बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ कवि अशोक जी, क्या पूछना चाहते हैं आप?
2: जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ब्लड प्रेशर रहता है करीबन 15 साल हो गए और 15 साल से मैं ये गोली खा रहा हूँ एक अम्लोकाइन 80, उससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। लेकिन अब ये बताओ कि इसकी हम छुटकारा कैसे पाऊं?
0: क्या उम्र है आपकी?
2: मेरी 60 है सर।
0: 60?
2: जी।
0: आप अपनी कविताएं सुना करके लोगों को खुश नहीं करते हो क्या?
2: जी मैं ले कर देता हूँ। गीत संगीत से जुड़े रहो, गीत संगीत से जुड़े रहो, टेंशन से रहो मुक्त, खाना शुद्ध और सरल रखो, सारे पाओगे सुख।
0: तो ये चीज आप अपनाते क्यों नहीं हो?
2: मैं तो अपना रहा हूँ सर, लेकिन वो टेंशन तो सर मुझे कुछ है ही नहीं, टेंशन में रखता ही नहीं, जिंदगी में क्या टेंशन रखना।
0: आपको बीपी का ही टेंशन है और कुछ नहीं है तो
2: मुझे इस बात का

0: टेंशन नहीं है सर, मुझे खर्च है कि ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, इस बात का टेंशन है।
1: आपका वजन कितना है
0: जी?
1: आपका वजन कितना है?
0: मेरा 178 है।
1: और हाइट कितनी है आपकी?
0: 5.25 फीट।
1: तो वजन कम करो सरकार, आप 50 किलो से ज़्यादा ज़्यादा गलत है, आ जाओ नीचे, वेट बढ़ेगा तो अपने आप ही आएगा ना बीपी।
0: अच्छा,
2: तो वजन
1: डेली 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग करें भूखे पेट, और एक चपाती खाने में कम करें, घी तेल चिकनाई भारी खाना तली हुई चीज़ें बंद करें, और फिर आप देखें नमक कम करें।
2: अगर ये सब प्रयास आप करें तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अशोक जी। डॉक्टर साहब, बड़ी ही मज़ेदार बात हमारे कवि साहब ने जिस तरीके से काव्य अंदाज में पेश की, लेकिन अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं।
1: तो
2: अक्सर ज़िंदगी में हम यही देख रहे हैं कि लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन खुद करना पसंद नहीं करते, तो कुछ करें भी सही, तभी जा करके आप कई व्याधियों को आप नियंत्रित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही है
2: जी। जी डॉक्टर साहब, और बीपी के मानकों की जब भी हम बात करते हैं कि 120-80 बीपी होना चाहिए, और कई बार लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि हमारी उम्र इतनी हो गई, इतना तो इस रेंज में तो हमारा रहेगा ही,
1: वो गलतफहमी है।
2: लोग ये कहते हैं कि एज प्लस 100 जोड़ करके बीपी को आंकना चाहिए, तो
1: गलत।
2: विश्वसनीय मात्रा क्या है डॉक्टर साहब इसकी?
1: साहब, अगर बीपी नॉर्मल 120 है और उम्र 60 है, तो 60 जोड़ दिया तो 200 हो गई, उसकी नस फट जाएगी।
2: जी जी जी,
1: बीपी तो वही होना चाहिए, स्टैंडर्ड है, इसमें कोई उम्र का लेना देना नहीं है, आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसी बीपी पे लाना पड़ेगा। गलत फहमियाँ निकालें और अफवाहों से बचें, बीपीएल लोगों से नाम मिलें बिना पढ़े लिखे डॉक्टरों से,
2: जी जी जी,
1: जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इवन मैं आपको एक बहुत स्पेशल बात बताऊंगा कि झालावाड़ और आसपास के गांवों में जहां जहां मैंने नौकरी करी है, वहां देखा है कि मरीज बिना पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास जाता है और वो जाकर के आपका बीपी नापता है और वो कहता है आपका बीपी लो है,
2: जी जी,
1: जबकि कोई लो नहीं है, नॉर्मल है,
2: जी,
1: और उसको लो कहके बोतल लगा देता है।
2: जी जी जी,
1: बोतल लगा देता है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसको कभी भी लकवा आने की संभावना बढ़ जाती है। मैंने इवन इसी सरकारी अस्पताल में एक पेशेंट देखा जिसका बीपी ज्यादा था, उसको मैंने कहा कि तू दवाई ले ले भैया और ध्यान रखना, तो वो वहां से चला गया
2: जी जी।
1: और जाके उसने बाहर बोतल लगवा दी और नेक्स्ट डे लकवे में आ गया।
2: जी जी, यानी नीम हकी में उसको बचना चाहिए।
1: बचना चाहिए सब, बिल्कुल बचना चाहिए। बीपी और डायबिटीज और इनके बारे में तो बहुत सोच समझ के सब ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, अपना पढ़े लिखे के पास जाएं,
2: जी जी जी,
1: कहीं गलती ना करें।
2: जी जी, तो जागरूक हमें खुद को होना पड़ेगा।
1: Yes.
2: हम देखते हैं कि गली गली कूचों कूचों में हमें क्लिनिक मिल जाते हैं जहाँ कई प्रकार के चिकित्सक के बोर्ड लगे रहते हैं और लोग वहाँ जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराना उचित समझते हैं, और कुछ लोग डॉक्टर साहब हमने देखा है कि वो मेडिसिन कोई चल रही है या मेडिकल स्टोर पर जाकर के ही खुद उपचार लेना पसंद करते हैं।
1: ये उनका खामियाजा है साहब, खामियाजा उन्हीं को भुगतना होता है और उनको पता नहीं लगता है। मेडिकल स्टोर पे जो खड़ा है लड़का, वो 10वीं पास भी नहीं है, वो नौकरी कर रहा है 7-8 हजार की, और वो कुछ भी गोली उठा के रोज सुन सुन करके दे देता है, तो उसका खामियाजा मरीज को ही भुगतना पड़ता है साहब। और अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी यही काम करते हैं,
2: जी जी,
1: जाके कह देंगे एक सरदर्द की गोली देना, एक बुखार की गोली देना। अगर बुखार की गोली अगर वो दे देगा दुकान वाला, तो ये डॉक्टरी की इतनी सारे 12वीं के बाद 12 साल सब बेकार हो गए।
2: जी जी जी,
1: अगर वो पहचान जाए तो हम लोगों को क्या करना है, वही गोली लिखनी है फिर तो।
2: यानी कि स्व उपचार तो बिल्कुल भी नहीं करना,
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग तो मोहल्ले में कहते हैं, लोग कहते हैं साहब ये दवाई खा लो तो ठीक हो जाएगा, तो लोग क्या कहते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको चिकित्सक से बात करो आप।
2: नहीं, हमारे यहाँ तो देखने में आता है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डॉक्टर है।
1: हाँ।
2: हम किसी से अपनी किसी भी बीमारी की व्याधि की बात करते हैं, हाँ। तो सीधा कह रहे आपको ये कर लेना चाहिए।
1: अभी भी ये कहते हैं लोग कि एवरी इंडियन इज ए डॉक्टर।
2: जी जी जी जी जी,
1: तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछोगे दवाई बता देगा।
2: जी जी जी सर, और हम अपने मूल विषय पर वापस आते हैं, हाइपरटेंशन की हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। तो इसी संबंध में अक्सर लोगों का मानना ये भी है कि ये जेनेटिक्स होता है, परिवार में किसी एक सदस्य को है, माता को है, पिता को है, तो उसकी संतानों में ही आ सकता है,
1: संभावना है।
2: हुँ.
1: बिल्कुल आ सकता है सब, जेनेटिक मैंने सबसे पहले ही कहा था।
2: जी जी जी,
1: ऊपर से नीचे आ सकता है।
2: जी,
1: अगर
2: जी.
1: हम पूछते हैं
2: हुँ.
1: कि आपके पेरेंट्स को है या किसी को है क्या,
2: हुँ.
1: तो संभावना है कि आ रही है,
2: हुँ.
1: और हो सकता है उसके अंदर दूसरा कॉज हो,
2: हुँ.
1: जरूरी नहीं है कि उसी कॉज से हो,
2: हुँ.
1: ये चक्कर है।
2: एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। नमस्कार, कार्यक्रम है आपकी सेहत।
3: हाँ मोहम्मद साजी सर को अस्सलाम वालेकुम।
2: हाँ वालेकुम सलाम, गोपाल जी गुप्ता बोल रहे हैं।
3: शंभूलाल बेरवा सर।
2: शंभूलाल जी, गोपाल गुप्ता और आपकी आवाज कई बार मिलती जुलती सी लगती है। हाँ अपना प्रश्न रखें, क्या पूछना चाहते हैं।
3: हाँ मातुर सर को भी मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
1: अरे वाह, गुड मॉर्निंग डियर।
3: हाँ सर, मतलब ये हाइपरटेंशन, ये ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक में अंतर है क्या सर?
1: हाँ
2: आपने अलग अलग चीजें
1: ऐसा है देखो,

0: हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर तो एक ही चीज है, हालांकि ब्लड प्रेशर नाम तो चीज अलग है, हाइपरटेंशन में तो बीपी ज्यादा है और ब्लड प्रेशर में तो आपका नॉर्मल बीपी भी ब्लड प्रेशर है। हर आदमी को ब्लड प्रेशर होता है, वो नॉर्मल होता है, ज्यादा नहीं होता, कम नहीं होता। और इसके अंदर हार्ट अटैक तो चीज ही बिल्कुल अलग हो गई, ब्लड प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो हार्ट का कोई पोर्शन खराब हो गया तो वो मतलब हार्ट अटैक है।
1: कुछ लोग सर कहते हैं कि मोटापे जो बड़ा लोग होता है उसके हार्ट अटैक जल्दी आता है, लेकिन दुबले पतले लोगों का असर क्या है सर?
0: किसको?
2: इनका कहने का मतलब है कि जो जिनका वजन ज्यादा होता है उन्हें हार्ट अटैक आता है क्या?
0: नहीं,
2: दुबले
0: किसी
2: पतले
0: को भी आ सकता है।
2: हाँ, दुबले पतले के विषय में पूछना चाहते
0: हैं। बिल्कुल किसी को भी आ सकता है, अगर आपके बीपी वगैरह कुछ है या कोई ऐसी खराबी है तो आ सकता है साहब।
2: शामू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और डॉक्टर साहब, जैसे कि ये कुछ ज़्यादा ही सचेत थे, हार्ट अटैक तक के पहुंच गए, और इसी तरह की और भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या किडनी की कोई और बीमारी है, तो क्या इसको भी हाइपरटेंशन से जोड़ करके हम देख सकते हैं?
0: जी हाँ, एक्चुअली क्या है, किडनी की बीमारी मोस्टली हाइपरटेंशन तो दे ही देती है। एक बात
2: जी,
0: डायबिटीज़ वाले के 99% बाद में बीपी आता ही आता है, और डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट अटैक भी आता है तो साइलेंट आता है,
2: जी जी
0: तो
2: जी,
0: पता ही नहीं लगता है क्या हो रहा है।
2: जी,
0: तो इसलिए डायबिटीज अगर आपको है तो यू शुड गो फॉर बीपी एंड हार्ट की चेकिंग पूरी आईएसडी के लिए।
2: जी जी जी डॉक्टर साहब, और बुढ़ापे की बात एक बार फिर करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चा पैदा होता है, किशोरावस्था युवावस्था में जाता है, काफ़ी टेंशन उस वक्त भी रहती है, लेकिन वहाँ तक उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आदमी बीमार या व्यक्ति का शरीर बीमार होता जाता है, कई व्याधियां उसे घेर लेती हैं, बीपी भी उसमें से एक है, तो ये उम्र के साथ इसका क्या ताल्लुक है?
0: आप बुढ़ापा किसको कहते हो ये बताओ मेरे को, तो बुढ़ा कितने साल में मानते हो?
2: देखिए, इसका कोई मानक हमारे पास नहीं है, लेकिन एज लिमिट की अगर हम बात करें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति की,
0: तो कितनी उम्र बढ़ा रहे हो आप? 30 से 40 कहोगे तो बुढ़ापा नहीं है, 40 से 50 कहोगे तो बुढ़ापा नहीं है, सरकार 60 में रिटायर करती है बूढ़ा समझ के, जिसका मतलब मैं आपके सामने बूढ़ा आदमी बैठा हुआ। वैसे मतलब अपार्ट जोक्स कि आपके जब भी गाड़ी पुरानी होगी तो खड़खड़ तो करेगी साहब।
2: जी जी जी।
0: तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो टूटने लग जाता है धीरे धीरे, कैटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है।
2: जी जी जी।
0: तो आपके बॉडी के कई सेल टूटने लग जाते हैं, सारी एक्टिविटीज कम हो जाती है, हाथ पैर भी आपके जान नहीं रहती है, तो उस हिसाब से सारी चीजें आने लग जाती है, फिर ग्रेजुअली बीमारियां भी आने लग जाती है, आपको आंखों से भी दिखना कम हो जाता है, पैरों से चलने में दिक्कत आती है, छड़ी लेके चलने लग जाते हो दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, घुटनों में दर्द आता है, एज के हिसाब से सारा होता है।
2: हाँ, क्योंकि हम जब एक शिशु के रूप में पैदा होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और दुनिया में आते हैं और सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, हमारा अनियमित दिनचर्या हो जाती है, हमारा खान पान आहार विहार सब कुछ बिगड़ता है, तो हमारे जो शरीर के अंग हैं उन पर प्रभाव पड़ता है शायद, और इसी वजह से हमारा शरीर,
0: इस वजह से के अलावा जी, भी साहब ग्रेजुअली चीज तो घिसती है साहब, कितना ही बढ़िया कार खरीद लो एक टाइम आएगा जब खराब हो जाएगी।
2: जी डॉक्टर साहब, तो इस वक्त हमारे श्रोताओं को कोई गीत आप सुनवाना चाहें?
0: हाँ साहब,
2: बताइए कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं आप?
0: ए मेरी जोहर जबी
2: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत हमारे श्रोताओं।

0: डॉक्टर साहब, बिल्कुल सच्चा गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया है कि अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो हाइपरटेंशन से बिल्कुल दूर रहिए। उम्र का तकाजा कोई मकाम नहीं रखता है, अगर आप दिल से जवान हैं, और हाइपरटेंशन भी इससे आपसे दूर रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, अक्सर कई लोगों को हमने देखा है कि कई प्रकार की वो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनमें नींद की दवाइयाँ भी आम हैं। बहुत से लोग नींद की दवाइयाँ लेकर के सोना चाहते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी हाइपरटेंशन की गिरफ्त में आ सकते
1: ऐसा
0: हैं?
1: है साहब, हाइपरटेंशन की वजह से लोगों को नींद नहीं आती कई बार, और स्ट्रेस में रहते हैं इसलिए भी नींद नहीं आती है। वैसे आपको एक बात बता दूं, मेरी 45-50 साल की डॉक्टरी में मैंने कभी नींद की गोलियां नहीं लिखी, अंटिल अनलेस मरीज स्ट्रेस दे कि मेरे को नींद की गोली लिखो,
0: जी जी
1: मैं
0: जी
1: नहीं लिखता। क्यों? कि नींद की गोली देने से आदमी की वो सारी चीज़ें हाइड हो जाती है, वो नींद में सो जाता है, बीमारी तो पता ही नहीं लगती है
0: जी जी जी जी
1: आपको। अगर मैंने ढक दिया नींद से तो बीमारी अंदर के अंदर चल रही है।
0: जी जी जी
1: तो पहले ट्रीट द डिजीज, उससे अपने आप हो जाएगा कि आदमी सो ले। मैं तो इसके जस्ट अगेंस्ट हूँ, नींद की गोलियाँ, सेडेटिव्स और जितनी भी हैं, पर कई साइकोटिक पेशेंट होते हैं जिनको नींद की गोली की जरूरत पड़ती है।
0: जी डॉक्टर साहब, और कार्यक्रम के आरंभ में आपने जिक्र किया था कि इसके लक्षण लोगों में किस प्रकार के नज़र आते हैं, जैसे सरदर्द है, थकान है, या उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, या हम कभी घर परिवार में देखते हैं किसी बुजुर्ग को वो चिड़चिड़ाते हुए नज़र आते हैं, तो इसके लक्षणों को हमें किस प्रकार से पहचानना चाहिए कि व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है?
1: ऐसा है साहब कि वजन अगर उसका ज़्यादा है, घबराहट उसको रहती है, या उसके सर में दर्द है, सर में भी कहाँ पे, इस जगह पे साहब, ऑक्सीपिटल रीजन, पीछे के हिस्से में अगर दर्द आता है उसके, तो संभावना है कि उसको ब्लड प्रेशर है। बाकी बीपी और शुगर में लोगों को पता ही नहीं लगता है
0: जी
1: कि
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बीपी
0: जी
1: या शुगर है। ये रूटीन एग्जामिनेशंस में निकलता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो, पर अगर आपकी उम्र 35-40 से ऊपर है तो हमेशा डॉक्टर को कहिए कि मेरा बीपी नापे ढंग
0: जी
1: से।
0: जी जी और कई बार देखा डॉक्टर साहब कि जब महिलाएं हैं हमारे परिवार में, सभी में महिलाएं होती हैं, तो मोनोपोज के बाद इसके लक्षण ज़्यादा प्रभावी होते हैं।
1: इसका कारण है साहब, इनके
0: जी जी
1: जो फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं ना,
0: जी जी
1: वो बंद हो जाते हैं, और मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है, तो मेल्स में हाइपरटेंशन ज़्यादा मिलता है
0: जी जी
1: और
0: जी
1: वो फिर फीमेल्स में भी आ जाता है। फिर मीनोपॉज के बाद में औरतें काम नहीं कर रही है, बैठी है, मोटापा बढ़ रहा है, घर बैठ के खा रही हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: फिर वो बीपी की शिकार हो ही जाती हैं साहब।
0: जी जी और जो अनियंत्रित हाइपरटेंशन है डॉक्टर साहब, तो
1: हाँ
0: इससे कौन कौन सी हमें जानलेवा जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, क्या स्वास्थ्य
1: यस,
0: के खतरे पैदा हो सकते हैं?
1: मेन दो तीन जांचें मैं बीमारियां बताता हूँ आपको आपके।

0: पानी के पाइप में प्रेशर ज़्यादा है
1: जी
0: तो कहीं से भी फट सकता है,
1: जी जी जी
0: तो उस प्रेशर की वजह से जहाँ से फटा है, अगर ब्रेन में फटा तो लकवा मार गया, ब्रेन हेमरेज,
1: जी
0: आँखों के पीछे की अगर उसने दिया तो रेटिना गई तो आपको दिखना बंद,
1: जी
0: गुर्दे में गई तो गुर्दे खराब,
1: जी
0: फेलियर, हार्ट में खराबी हुई तो हार्ट अटैक, तो आप तो पूरे जा रहे हो, तो इसीलिए बीपी तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है साहब, तो इसलिए हमारे को इन चीज़ों से सबसे बच के रहना पड़ेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, ईडीमा फिट हो जाएगा, आपके प्रेशर जब उल्टा होता है, हार्ट के ऊपर लोड आता है, हार्ट फेलियर में जाता है आदमी।
1: जी जी
0: अब
1: जी
0: आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटा गुब्बारा नया खरीदें आप और उसमें हवा भरें, हवा भरेंगे तो फूल जाएगा,
1: जी
0: तो ये ऐसे समझो कि आपने बीपी बढ़ा लिया अपना। अब आप उसका दवाई दे के बीपी कम कर लो, यानी कि उसकी हवा निकाल दो गुब्बारे की, तो भी उसमें सल आ जाते हैं, आप देखना,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: वो सल आ गए, इसका मतलब अपने हार्ट की मसल्स वीक हो गई,
1: जी जी जी
0: तो ये हार्ट फेलियर की तरफ ले जाता है। तो चलेंगे तो सांस भरेगी, घबराहट होगी, पैरों में सूजन आएगी, थकान हो जाएगी,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: सब चीज़ें रहेगी, तो ये सब परेशान करने वाली बीमारियां हैं। आदमी घबरा जाता है, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाता है और जाने अनजाने में किसी बीपीएलडी के पास चला गया बिना पढ़े लिखे डॉक्टर के पास, तो वो पैसे से भी धोता है, दवाइयों से भी धोता है।
1: आप ये बीपीएलडी शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे श्रोताओं को एक बार इसको डिफाइन करके बता दें।
0: बीपीएलडी मतलब बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर,
1: यानी किसी झोला छाप डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना
0: हम
1: चाहिए।
0: तमीज से बोलते हैं साहब।
1: जी जी जी यार साहब, और आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार लोगों को डिमेंशिया भी हो जाता है, तो
0: हाँ,
1: क्या इसका भी ब्लड प्रेशर से कोई
0: ब्रेन
1: संबंध?
0: ब्रेन के ऊपर जब भी किसी
1: जी जी
0: चीज़ का
1: जी
0: इफेक्ट आएगा, कहाँ उसने क्या इफेक्ट दिया उसके हिसाब से वो पार्ट खराब हो रहा है, जहाँ की नस फटी या जहाँ प्रेशर बढ़ गया या आर्टरी डायलेट हो रही है वहाँ की, तो उसने दबाव दिया उस ब्रेन के में उसमें मैटर पे, तो वहाँ का नुकसान तो हो गई, वो एक्शन खत्म हो जाएंगे सारे,
1: जी जी
0: ये
1: डॉक्टर
0: चक्कर
1: साहब,
0: है।
1: और अब आपसे यही सवाल डॉक्टर साहब कि इस ब्लड प्रेशर को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं?
0: कंट्रोल करने के लिए साहब सबसे पहले तो आपको अपना रूटीन संभालना पड़ेगा कि आप कैसे एक्टिव रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, आप सेडेंटरी लाइफ तो नहीं जी रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी जी जी
0: फिर नंबर दो, आपको अपना डाइटरी रखना पड़ेगा, सॉल्ट कम करना पड़ेगा, घी तेल चिकनाई भारी खाना, तली हुई
1: जी
0: चीज़ें
1: जी
0: बंद करनी पड़ेगी, आपको अपने बॉडी में एक्टिविटी लानी पड़ेगी। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉकिंग करें आप, कम से कम 5 किलोमीटर की वॉकिंग करें, इस तरह से आप अपनी बॉडी को मेंटेन करें जिससे कि आपका काम चलता रहे, नहीं तो अपन तो अटक ही जाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पता नहीं होता हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, और जब
0: जी
1: एक बार हम जाते हैं हमें पता लगता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ आया है, और डॉक्टर कहते हैं कि इसको नियमित रूप से चेक कराते रहिए, तो ये नियमित रूप का मतलब क्या है?
0: ऐसा है साहब कि अगर आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा है तो हम उसको दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद मैं तो उसको 7 दिन बाद ही बुलाता हूँ
1: जी जी
0: जस्ट टू सी कि उसका बीपी कितना है, नॉर्मलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी भी बढ़ा हुआ है तो आई एड माई सम मेडिसिन मोर, या दवाई चेंज करते हैं उसकी, फिर उसको वापस 7 दिन, 8 दिन या 15 दिन में बुलाते हैं। बीपी अगर नॉर्मल है तो वी आस्क हिम टू कम एवरी 15th डे,
1: जी जी जी
0: फिर हर 15 दिन बाद जब वो आ रहा है तो उसका बीपी अगर नॉर्मल है, इट इज़ नियमित, तो 15 दिन बाद नॉर्मल आ रहा है तो उसको मैं फिर 1-1 महीने से बुलाता हूँ,
1: जी
0: पर
1: जी
0: एवरी मंथ तो आपको आना ही आना है, और उसके इन्वेस्टिगेशन अपने को सारे कराने होते हैं।
1: जी, इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए?
0: सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन तो लिपिड प्रोफाइल है,
1: जी जी
0: रीनल फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल में हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब देख लेंगे कि उसका बढ़ावा तो नहीं है, और रीनल फंक्शन में हम देख लेंगे यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहे हैं,
1: जी जी जी
0: और सीबीसी एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जो सारे पेशेंट्स के करवानी
1: जी
0: होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: जिसमें हमें पता लग जाता है कि कहीं उसकी बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं पड़ा है,
1: जी जी जी जी जी
0: तो उससे कहीं थकान तो नहीं हो रही है, आरएफटी एलएफटी, फिर बच गया एक ईसीजी, आपने ईसीजी करा के देखना है कि आपके हार्ट पे कितना इफेक्ट आ चुका है,
1: जी जी
0: फिर उसके बाद में आपका है आई टेस्ट, आपके रेटिनोपैथी तो डेवलप नहीं हो गई उस बीपी से, अनजाने में रहा इतने साल तक और उसको पता ही नहीं रहा, तो उसको दिखना भी कम हुआ होगा, कोई रेटिना पे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई,
1: जी जी जी
0: तो उसका फिर अपने ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा सबका।
1: और ट्रीटमेंट जीवन भर ही लेना है?
0: जी हाँ, जीवन भर रोटी खानी है, जीवन भर कपड़े पहनने हैं, जीवन भर नहाना है, तो दवाई क्यों नहीं लेना है।
1: जी जी जी और जब इतने समय, लंबे समय तक व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाई लेता है, तो क्या इसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता?
0: नहीं लेंगे तो दुष्प्रभाव है साहब, कभी भी लकवा मार गया, हार्ट अटैक आ गया तो
1: जी जी
0: सत्यानाश हो गया, उससे बेटर है कि गोली खा लें और उसका दुष्प्रभाव देख करके डॉक्टर देवे।
1: और कई बार देखने में आता है डॉक्टर साहब कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या हृदय के रोगी हैं, तो उनके लिए क्या उपचार की अलग थेरेपी अपनाई जाती है, मेडिसिन अलग होती हैं?
0: नहीं ऐसा है साहब, आप अगर डायबिटीज़ है तो यू हैव टू कंट्रोल शुगर फर्स्ट थिंग, और शुगर कंट्रोल करके आपको उसका बीपी एग्जामिनेशन और ये हार्ट की चीज़ें भी देख

0: रहना चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर, वरना मरीज तो ये सोचता है इतनी जांचें क्यों करा रहे हैं। बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप शुगर कंट्रोल कर लें, उसके बाद में आप उसका बीपी देखें, बीपी अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करें बीपी की दवाई से। हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है तो अपने को हार्ट अटैक की भी दवाइयाँ देनी पड़ेगी।
1: जी जी जी,
0: तो ये सारी दवाइयाँ अपने को देनी ही होती है।
1: जी जी,
0: इवन फॉरेन कंट्रीज़ में डायबिटीज़ को आधा हार्ट अटैक मानते हैं।
1: जी जी जी,
0: वो डायबिटीज़ वाले को एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल चालू कर ही देते हैं।
1: तो कुल मिलाकर के बात यही है कि नियमित व्यायाम करें, अपने जीवन शैली को संयमित रखें और तनाव मुक्त जीवन जिए।
0: बिल्कुल सर।
1: तो श्रोताओं, डॉक्टर आर डी माथुर की सलाह आप माने और याद रखें, नियमित ब्लड प्रेशर की जाँच कराएं, स्वस्थ आहार व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली से आप अपना जो उच्च रक्तचाप है उसमें आराम पा सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम अभी यहीं तक श्रोताओं। आज हमने हाइपरटेंशन के दुष्प्रभाव, कारण और बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की और डॉक्टर आर डी माथुर साहब ने इस उपयोगी जानकारी से हमें लाभान्वित किया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
1: और चलते चलते आपको बता दें मित्रों कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे नवीन कुमार लोधा, प्रस्तुति सहायक विमल शास्त्री, प्रस्तुति के पी मीणा की, और अब अपने दोस्त मोहम्मद साजिद को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा स्वास्थ्य विषयक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हो रही है। भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश

की 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1,300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत

0: 3 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एस्कॉर्ट सुरक्षा छोड़कर ईंधन बचाने का संदेश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि ईंधन की बचत आज के समय की जरूरत है, हर देशवासी को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए।
1: ईंधन को बचाना है, ये हर भारतीय को ये सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं राष्ट्र हित के लिए कहते हैं, आज मैंने तय किया है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी एक चलती है वो बंद, सिर्फ जो मेरी गाड़ी है ये गाड़ी जो मुझे मिली है उस गाड़ी का मैं उपयोग करूंगा और एस्कॉर्ट गाड़ी इसका उपयोग नहीं करेंगे ताकि ईंधन की बचत हो।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजे संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
2: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कौन मालूम करेंगे, गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट केस लड़ाएगा। जो डेथ हुई उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस में देना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद की आंखों में आंसू लगाए।
0: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से

0: पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब अगले कार्यक्रम विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा मुंबई से।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए, 30 मार खां फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग जीवा माधुरी दीक्षित से।

और घर में सबसे छोटी सबके दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गईं, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: हाय।
1: अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले।

सन 2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े

0: टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन दिल झूठ मत बोलो, खुदा के पास

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी, और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो

दुश्मन है हमारी वो, ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहां से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत ही अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, थोड़ा सा

0: देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बारे में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
1: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
0: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
1: अच्छा,
0: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
1: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
0: किसी भी समय में आती हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हैरो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है, तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
0: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
1: जी,
0: तो बंगाली रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
1: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार
0: नमस्ते जी। आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस दो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपकी मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विद भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, अभी तो फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी है। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चले परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अलिफ तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अजीब।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी ये काम, बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहां का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सैटेलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं, खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है ये हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में, बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते, आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से, तेरी

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती
1: जी,
0: में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर 2 सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब
0: जी
1: के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: कालजयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: तो साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूपमा राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

गहरा गहरा नथू खेरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोक गीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग दरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

अभी आप विविध सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओं, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
0: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
0: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया

0: है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं।

0: Bum bum. रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं, तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ,
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
3: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
4: जी सुबेदार साहब।
3: हम 29 लोग हैं।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे

0: तो कम से कम चार खाइयां और तीन बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या
0: जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
2: अरे क्या

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई हुए हैं।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

अभी आप विविध राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर

0: मोड में होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी।
1: सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। ईंधन बचत अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री शर्मा ईवी वाहन में कार्यक्रम में पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
2: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लग लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
0: खैरथल तिजारा जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हो रहे कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े हैं। ईंधन बचत अभियान को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में ये लोग वर्चुअल भागीदारी कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री शेखावत ने भारतीय राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा की अमिट छाप छोड़ी। गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर श्री शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल चौराहे पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ ले जाए जा रहे चोरी के आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार पुलिसकर्मी चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने में पदस्थापित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रमों की ओर।

मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इबारत में तो सिर्फ दो खेल का नाम है। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे। वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाए। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गाँव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो ज़रूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीज़ी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम छुपाई, पोसंपा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोर पुलिस, कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो रेल की गाड़ी पे यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज़्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी भी के घर में नानी को ज़्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे हैं ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो ज़रूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कहने कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। ज़मीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रख कर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाय चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में भाई। इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम

0: क्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुलसती हुई तेज़ गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफ़र करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफ़र सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के

0: छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लुगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से, जान किस अदा

0: था मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है, जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए, इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज़ आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती

गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था। ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें, हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी। हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए, तो आप हमें बताइए। तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

0: आती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है, गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहाँ सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहाँ जाएँ। और गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहाँ के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है। और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे। हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं। और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसा कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था। और हम दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था। ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ आओ आओ। ये कैसे चले, लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन, फिर तीन, फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो।
3: नाव चली नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक बीवर का जाल, एक लहसुन निकालू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: फिर क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन कालू, एक भीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक घड़ी।
2: मगर नानी

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शा

0: लेक रही थी।
1: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी इतनी गहरी।
0: कितनी गहरी?
1: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी रात की रानी, ठंडा पानी गरम मसाला पेट में ताला, 16:30 15:15 दूना 30 43 चौके सा पना 75 96 साथी पचलन 8 20 नंबर 35 गले में रस्सा।
2: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज़, टक टक की आवाज़ निकालना आदि। वो सब आवाज़ मेरे अंदर बैठी है बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज़ में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहीं हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियाँ देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज़्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज़्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो ज़रूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

0: के पाया खोली।
1: किसने? मैंने? नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम पर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो

पानी बंद ही नहीं हो रहा था, तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है। तो किसी ने आवाज़ दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोग ऐसे भोले भाते भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म कड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से। उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी, और फिर बारी बारी से सब बैठते थे। सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीज़ों का। और एक साथी कहती हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गाँव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाज़ें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे कौर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है।

छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वी मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं। वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो तो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था

0: का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बैडमिंटन की थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवी ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है

ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: शादी।
1: अरे हेलो हेलो हेलो।
2: राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक भरा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3,000 बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी, नाना नानी का उन्हें सपोर्ट

0: मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होके बेफिक्र होके मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे। तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो तभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशिया जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान जी और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायके हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से
0: फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ। मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप? कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उनके आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी, बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से
0: फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना।
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना, तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने की तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया, तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत से फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ,
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
1: गाने सुनते हो? रहता रेडियो दिन भर
0: रेडियो चालू रहता। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती है आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम खाली।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चों का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद हाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
0: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी?
0: जी।

0: और आपने पसंद
1: दो महीना से छटपटा रहे थे हाँ, जी कब 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम
1: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, हाँ। अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती है जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती है, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: साड़ी सेंटर में। सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन
1: के बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या बात है,
1: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?

0: रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह हैं 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867028 2867028। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है।

आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सर

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी

अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड एक माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल

से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्त

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
1: इश्क

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: शाम ढल किया, दिन की थक कर खुद को समेट लिया। हल्की सी हवा जैसे मैं बोली काम जैसे जिंदगी सिर्फ दो, यूं बैठकर मुस्कुराना भी जरूरी है।
1: तो चलिए फिर इस शाम के नाम एक प्याला चाय उठाएं, थोड़ी बात की करें, थोड़ा हंसें और सुने और दिल से सुनाएं।
0: अभी युवाओं और नए सपनों के साथ दोस्तों का पसंदीदा
1: दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी ही, आप सभी की दोस्त प्यारी छोटी सी क्यूट सी शिल्पा, और हमसे भी ज्यादा एक और क्यूट सी लड़की जिनका
0: दोस्तों एक जो सोचते ही सवाल पूछते हैं हकीकत में बदलने की
1: बिल्कुल
0: जो और जिनके दिल में हमेशा कुछ नया चमक होती है।
1: भी क्यों कहा कि हमारे साथ एक पर जैसी लड़की है, वो इसलिए क्योंकि जब आपको याद में कहानियां सुनते थे पत्तों की तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी।
0: अच्छा,
1: और मुझे लगता है कहीं मुस्कान जरूर आती होगी।
0: बिल्कुल आती है, अगर हम अपने तो हर पीछे किसी का तो किसी को संगीत में करियर बनाना है।
1: जी हाँ, कोई खेलों में कोई देने जैसा बड़ा चल रहा है।
0: शिल्पा मानती है विचार मंजिल एक ही है हमारी, खुद को योगदान और इसी सोच के साथ रोता है श्रोताओं।
1: दोस्तों जहां हम बात करते हैं करियर की खुशियों और संघर्षों की भी, कभी की सफलता की कहते हैं और कभी ये नई जानकारी है।
0: तो चलिए गहरी सांस लीजिए, कॉफी या चाय का कप हो तो एक चुस्की ले लीजिए,
1: क्योंकि आप

0: सिर्फ आपके सपनों के नाम, आपकी मेहनत के नाम और नाम जो आपके अंदर छिपी हैं।
1: फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, बाकी बातें बाद में करेंगे।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए।

0: मम्मी आज खाने में क्या बना है? और पापा जरा आप मेरी बाइक की चाबी देना, आपकी जय बाइक की।
1: अरे भाई रिमोट कहाँ है?
0: हम हर दिन अपने घरों में यही सब तो बोलते हैं ना शिल्पा।
1: हाँ अंतिमा, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक सुबह आप सोकर उठें,
0: अच्छा,
1: और घर में एकदम सन्नाटा हो,
0: ओ,
1: कोई रसोई से आवाज ना दे,
0: कोई टीवी का वॉल्यूम तेज ना करे,
1: कोई अखबार पढ़ते हुए ना खांसे, सिर्फ चारों तरफ सूनी दीवारें हो, तो बताओ कैसा लगेगा?
0: डरा दिया ना, दिल बैठ गया ना सोच कर ही। शाम के 5 बज चुके हैं दोस्तों, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल।
1: आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी। श्रोताओं, जिस सन्नाटे की बात हमने अभी की वो सिर्फ एक डरावना ख्याल था
0: जी,
1: लेकिन सच ये है कि इस शोर शराबे, लड़ाई झगड़े और नोकझोंक वाली जिंदगी का नाम ही परिवार है।
0: बिल्कुल शिल्पा, और आज 15 मई को इसी प्यारे से परिवार को सलाम करने का दिन है
1: जी,
0: क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: सच में अंतिमा, शुरुआत सन्नाटा सोच कर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम सुबह हैं कि घर में कितना है, इतनी चिक करते हैं, लेकिन ये है कि यही चिक जो है वो हमारी जिंदगी की असली रौनक है।
0: अरे मेरी बात सुनो पहले, अभी मैं जब रेडियो स्टेशन आ रही थी तो मेरी छोटी बहन ने मेरी जो मेरी पसंदीदा कुर्ती पहन ली उसने,
1: अच्छा,
0: मैं उस पर चिल्ला रही थी, मम्मी ने पीछे से आकर बताया मेरे मुंह में ना गर्मा गर्म पराठा टूस दिया बिल्कुल।
1: अच्छा,
0: और ना पापा बोले कि चिल्ला मत अंतिमा, आज रेडियो पर परिवार दिवस पर बोलना है।
1: हाँ।
0: और अपनी इस फिल्म में फैमिली की इज्जत रखना वहाँ।
1: वाह, मैंने तो मतलब
0: बिल्कुल
1: खूबसूरती है, जब ये व्यू नहीं बोलना पड़ता है।
0: लेकिन शिल्पा एक कड़वा सच ये भी है कि आज हम सब एक ही छत के नीचे रहकर भी दूर हो रहे हैं
1: जी।
0: सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं पर आंखें सबके अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर होती हैं
1: जी, जी, जी।
0: हम दुनिया भर के रील्स लाइक कर रहे हैं पर माँ के चेहरे की थकान देखना भूल रहे हैं हम।
1: बिल्कुल सही कहा अंतिमा जी, सोशल मीडिया पर हमारे पास हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब सच में दिल उदास तो
0: चलिए इस शाम, इस खास दिन पर एक संकल्प लेते हैं, आज की शाम को बनाते हैं नो गैजेट इवनिंग, और शाम 7 से 9 बजे तक घर के सारे फोन, लैपटॉप और टीवी बंद, सिर्फ आपका परिवार और ढेर सारी पुरानी यादें और चाय की चुस्कियां।
1: और इस सिलसिले में रह रहे हैं
0: वो आज सिर्फ एक हैप्पी फैमिली डे पर मैसेज फॉरवर्ड नहीं भेजेंगे, आज सीधे फोन मिलाकर मम्मी पापा से एक लंबी बात करेंगे, क्योंकि परिवार वो नहीं जो सिर्फ तस्वीरों में साथ दिखे, परिवार तो वो हैं जो हर तकलीफ में तकिए की तरह आपके पीछे खड़ा रहे। तो चलिए श्रोताओं, बातों का ये कारवा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन पहले सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गाना जो आपको सीधे आपके घर के आंगन की याद दिला देगा। कौन सा गाना प्ले कर रही हैं आप?
1: तो चलिए श्रोताओं, आपको गीत संगीत की दुनिया में ले ही चलते हैं, पता चल ही जाएगा।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: उसमें ना किसी को पता भी नहीं, उसमें कुछ भी बोलते रहते हैं यार, उसको बताए और ना लोग पावर रखने, हाँ कुछ भी हिंदी में इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश में हिंदी, और फिर लैंग्वेज का ध्यान तो नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है, सब कुछ भी बोल रहे हैं, सब
1: लिख भी कुछ भी देते हैं, मतलब कुछ पता नहीं,
0: और ध्यान देने वाली बात ही कोई ध्यान नहीं दे, इस वजह से अगर आज सबको ध्यान पड़े ना तो
1: अभी डांट पड़ जाए।
0: अच्छा अंतिमा, अगर आज वो स्टूडियो में आ गए तो

0: तो फिर हमारी खैर लो।
1: तुम क्यों डरा रही हो? कौन शिल्पा? अपने स्टेशन डायरेक्टर सर?
0: नहीं,
1: या फिर हमारा कोई नाराज श्रोता?
0: अरे नहीं, मैं हिंदी साहित्य के वो इंग्लिश है वो सुन ले तो
1: नो लैंग्वेज जो हम साथ में बोलते हैं।
0: बिल्कुल
1: यार, तुम आचार्य महावीर प्रसाद द्वे जी की बात कर रहे हो।
0: बिल्कुल सही पकड़ा तुमने।
1: बिल्कुल सही कहा शिल्पा। आज 14 मई है, यानी उस महावीर का जन्मदिन है जिसने हिंदी भाषा को घुटनों के बल चलने से रोककर उसे अपने पैरों पर सीना तानकर खड़ा होना सिखाया है।
0: बिल्कुल अंतिमा, पूछते हैं कि उनका तो दुनिया खत्म, द्विवेदी जी के जमाने में सरस्वती पत्रिका में छपना क्या?
1: अरे शिल्पा, तब सरस्वती सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, वो हिंदी साहित्य का सुप्रीम कोर्ट थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: द्विवेदी जी उसके जज थे और जब बड़े बड़े दिग्गज कवि अपनी कविता भेजते थे तो द्विवेदी जी लाल स्याही का पेन लगाकर बैठते थे। एक भी मात्रा गलत हुई, एक भी शब्द उर्दू या फारसी का जबरदस्ती ठूसा हुआ मिला तो खचाक से सीधे रिजेक्ट।
0: और जानते हो, वो सिर्फ रिजेक्ट नहीं करते थे, वो बकायदा चिट्ठी लिखकर भेजते थे कि भाई पहले व्याकरण सीखो फिर कविता लिखना। और ऐसा कर तो सोशल मीडिया ट्रेंडी बन जाता है।
1: लेकिन शिल्पा, उसी डांट का नतीजा क्या हुआ?
0: क्या?
1: इससे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जैसी महान विभूतियां पैदा हुई।
0: बिल्कुल सही है।
1: गुप्त जी ने खुद माना था कि उन्हें कवि बनाने वाले द्विवेदी जी ही थे। वो डांट गुस्सा नहीं, हिंदी को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा बनाने की तपस्या थी दोस्तों।
0: और आज आधुनिक हिंदी भाषा के निर्माता, मार्गदर्शक और युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती हम मना रहे हैं, जिनसे कभी बड़े बड़े लेखक और कवि अपनी कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए थर थर कांपते थे। क्यों अंतिमा?
1: शिल्पा, थर थर कांपना नहीं, उसे अदब और अनुशासन कहते हैं।
0: ओ।
1: सोचो, अगर द्विवेदी जी न होते तो आज हम और आप रेडियो पर इतनी साफ, सुंदर और खड़ी बोली हिंदी में बात नहीं कर रहे होते। उन्होंने बिखरी हुई हिंदी को तराश कर हीरा बना दिया है।
0: और अंतिमा, मुझे उनकी सबसे खूबसूरत बात लगती है उनका फौलादी स्वाभिमान। छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए अपने उसूल बेच देते हैं।
1: झालावाड़ के मेरे प्यारे दोस्तों, आज गाड़ी चलाते हुए या घर में चाय पीते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिएगा, हम अपनी भाषा को क्या दे रहे हैं? क्या हम गर्व से हिंदी बोल पाते हैं?
0: आज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती पर यही हमारा सबसे बड़ा तोहफा होगा कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें, उसे शुद्ध और सुंदर बनाएं।
1: और हाँ, रेडियो पर हम थोड़ी बहुत अंग्रेजी मिक्स कर लेते हैं, उसके लिए आचार्य जी हमें ऊपर से माफ जरूर कर देंगे, क्योंकि हमारा दिल बिल्कुल शुद्ध हिंदी है। क्यों शिल्पा?
0: बिल्कुल सही कहा अंतिमा। और श्रोताओं, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम आपको ऐसा गीत सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको आपके घर के आंगन की याद दिला दे, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उस गीत की ओर।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

0: श्रोताओं, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के सबसे खास, सबसे स्पेशल और आप सभी के पसंदीदा सेगमेंट, जिसका नाम है चिराग जल रहे हैं। और आज चिराग जल रहे युवा डायरी में हमारे श्रोता सुनेंगे गोपाल चौरसिया से अनूप शौरी जी की बातचीत।
1: साथियों, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी अपने 90 साल पूरा कर रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी और ये अब 90 साल का होने जा रहा है। इसका मिशन हमेशा से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि अधिक लोगों के हित और सुख के लिए रहा है, जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए भारत की सांस्कृतिक विविधता की आवाज़ देना है और देश को एकता के सूत्र में बांधना है। और ये आज ये देश के 92% हिस्से को ये आकाशवाणी कवर कर रहा है, जो हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 साल। और इसी के अंतर्गत आज हमारे एक श्रोता हैं, और श्रोता भी क्या है हमारे साथ, जो ये बहुत पुराने श्रोता हैं, जो हमारे केंद्र जब शुरू हुआ था तब से ही हमारे श्रोता हैं, यानी यूं कहें कि सन 1993 से ही हमसे जुड़े हुए हैं। ये व्यक्तित्व है झालरापाटन निवासी गोपाल चौरसिया जी। ये ऐसे श्रोता हैं जिनके पास हमारे कार्यक्रम की पुरानी रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखी हुई है, तो आज हमारे साथ हैं। गोपाल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सर।
1: गोपाल जी, अपने बारे में, वैसे आपकी विशेषता हमने काफी बता दी है कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, आप हमारे से जुड़े हुए हैं, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप के बारे में कुछ जानकारी जो आपके अंदर है हमको नहीं पता है वो बताएं।
2: सर, मैं पहला तो अपना परिचय देना चाहता हूं। सर, मेरा नाम गोपाल चौरसिया है, मैं झालरापाटन का रहने वाला हूं, और मैं काफ़ी टाइम से मैं अपने झालावाड़ से जुड़ा हुआ हूं, और मैं इससे पहले सर और रेडियो से भी जुड़ा हुआ था। मेरा क्या बचपन से ही लगाव है सर रेडियो सुनने का, और जैसे पहले SW MW हुआ करते थे,
1: SW शॉर्ट वेव मीडियम वेव
2: हुआ करते थे सर, तो इसमें क्या कि मैं बिना का गीतमाला सुना करता था, और इंदौर जो बैंड आता है सर उसमें इंदौर के प्रोग्राम सुना करता था, और भी नेपाल आता था, बहुत सारे प्रोग्राम सुनता था सर मैं, मेरे को बचपन से बहुत लगाव है। बाकी सर, जब 93 में अपना झालावाड़ आकाशवाणी शुरू हुआ, तब से मैं क्या कि सर इससे मेरे को जुड़ा हुआ। 93 में क्या हुआ करते थे साहब, 2:55 पे चालू हुआ करता था दोपहर में, तो कुछ ही घंटों के लिए चालू हुआ करता था, तो हमें थोड़ा वो रहता था कि यार थोड़ा आकाशवाणी का समय बढ़ा जाए, तो ये धीरे धीरे क्या सर प्रगति करता गया, और इससे क्या आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया आकाशवाणी झालावाड़ चंद्रभागा चैनल। तो

0: सर आज अपन को 5:55 पे चालू होता है मॉर्निंग में और 9:30 पे बंद होता है सर, तो इसमें क्या कि सारे ही प्रोग्राम आज आ गए लगभग मेरे हिसाब से, और बीच बीच में क्या कि सर विविध भारती को जोड़ दिया जाता है तो इसपे और चार चार लग जाते हैं सर।
1: वैसे गोपाल जी, जैसे आपने बताया कि आपका शौक शुरू से रहा है, काफी टाइम से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप वैसे क्या करते हैं आप निजी जीवन में?
0: मेरा सर व्यवसाय किराने का है।
1: किराने का व्यापार है आपका?
0: किराने की दुकान।
1: किराने के व्यापार में है आप, तो इतना समय आप आकाशवाणी के प्रोग्राम है या किसी और रेडियो के प्रोग्राम में, तो कैसे उसका समायोजन करते हैं?
0: सर ऐसा है, मेरे पास बहुत पुराना रेडियो फिलिप्स का, तो उसमें क्या क्या मैंने प्लेट डलवाई थी सर, उस जमाने में FM प्लेट आती थी, उस जमाने में उस प्लेट को डलवाया मैंने, और उसमें क्या है सर एकदम क्लियर बोलता है अपने, वैसे 100-150 किलोमीटर की रेंज तो ही सही, झालरा पाटन ज्यादा दूर नहीं है सर, तो उसमें क्या क्लियर बोलता है, मेरा एक ही जगह रेडियो रखा रहता है, तो उसको मैं क्या साउंड करके और मैं अपनी गिराकी भी करता रहता हूँ, और जो गिरा यार गोपाल जी आपके रेडियो में तो यार पुराने गाने अच्छे आते हैं, सारे प्रोग्राम अच्छे आते रहते हैं, तो मैं उनको वो भी कहता हूँ कि सर मैं ये आकाशवाणी चंद्रभागा चैनल झालावाड़ लगा हुआ, मेरा ये सुबह चालू होता और रात को
1: हमारे केंद्र का आप प्रसारण भी बताते भी रहते हैं उनके और हमारे इसकी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल साल में आकाशवाणी चैनल आप सुनिए आप भी
0: बिल्कुल साल में एडवर्टाइजमेंट भी करता रहता हूँ।
1: वैसे देखा जाए तो हमारा झालरापाटन नगर जो है ऐतिहासिक दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल साहब,
1: तो आप हमारे श्रोताओं को अपने झालरापाटन ऐतिहासिक नगरी जो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
0: सर सबसे बड़ी बात तो झालावाड़ आकाशवाणी की ये है सर कि हमारे जो चंद्रभागा नदी है उसका नाम झालावाड़ आकाशवाणी ने रखा है, चंद्रभागा चैनल, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है सर।
1: अब झालरापाटन के जो नगर है वैसे काफी ऐतिहासिक नगर है, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को जानकारियां दें।
0: सर सबसे पहले तो क्या है कि चंद्रभागा नदी जो है बहुत पुरानी है, इसमें कई नदियां मिलके यहाँ आती है, और सूर्य मंदिर है काफी पुराना है जिसको हम बड़ा मंदिर भी बोलते हैं, 700 के मंदिर के नाम से जाना जाता है, और हमारे झालरापाटन में क्या है कि सर किला भी है, और धार्मिक नगरी झालरापाटन पूजा कोई जमाने में पूजा हुआ करती थी तो झालरे बसती थी, इसी के कारण झालरापाटन नाम रखा हुआ है। और हमारे झालरापाटन के क्या है सर परकोटा है पूरा, तो इसमें क्या चार दरवाजे हैं
1: जी,
0: तो इसमें क्या कि चारों दरवाजे क्या कुछ जमाने में क्या है कि बहुत सुरक्षा हुआ करती थी, चारों दरवाजे बंद कर दिया करते थे सर, तो कोई बाहर का व्यक्ति आ नहीं पाता था। और सर दरवाजों के क्या पास में हमारे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चारों दरवाजे के पास में दोनों ही है सर, राम भी है रहीम भी है सर।
1: वाह साहब, यानी कि आपके पूरे वहाँ जैसे हमारी पहचान ये है कि सर्वधर्म संभव, सारे धर्म समान भाव से देखे जाएं, वो हमारे इस परंपरा झालरापाटन में भी है। और जैसे आकाशवाणी कई 90 साल होने वाले हैं, तो आपके हमारे कार्यक्रमों में ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, और कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें हम आपको ये बताना पड़ेगा ये हमारा प्रोग्राम सही नहीं चल रहा, आप इसमें ये कुछ कर सकते हैं तो अच्छा करें, तो ऐसा कुछ लगता है कि हमारे इस किसी कार्यक्रम में कुछ अच्छा ही करने के लिए आपको कुछ बता सके?
0: नहीं नहीं नहीं सर, ये आकाशवाणी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर, आकाशवाणी में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है और ये सारे प्रोग्राम अच्छे चलते हैं, अपने 5:55 से लेके सुबह मॉर्निंग में भजन वगैरह आते हैं, रामचरितमानस वो आता है सर, उसके बाद में महिलाओं का प्रोग्राम भी आता है 8:30 बजे, और इसके बाद में सर सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं और सारे प्रोग्राम अच्छे चलते हैं, उसके बाद में विविध भारती को भी जोड़ दिया जाता है तो विविध भारती का भी सारा प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है सर। हेलो फरमाइश की जगह हेलो फरमाइश आती है, युवाणी की जगह युवाणी आती है सर, और महिलाओं के लिए सारे प्रोग्राम आते हैं, और किसानों के लिए भी सारे प्रोग्राम अच्छे आते हैं।
1: अगर आपसे कह दिया कि आपका पहले नंबर का कार्यक्रम कौन सा है?
0: तो सर पहले नंबर का कार्यक्रम तो ये लाइव प्रोग्राम जो चलता है हेलो आकाशवाणी हेलो फरमाइश,
1: यानी कि गीत संगीत ही आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद जैसे हमारे कार्यक्रम में तो बहुत सारे डॉक्टर का भी है, हमारे कृषि का कार्यक्रम भी है, और उसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे युवाओं के लिए कार्यक्रम भी आते हैं, युवाओं की प्रेरणा के लिए भी आते हैं, तो वो प्रोग्राम आपके लिए कैसे हैं?
0: नहीं नहीं सर बढ़िया रहते हैं सब, सभी में अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है हमें, तो युवाओं के लिए भी आती है सर, युवाणी आती है उसमें अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, भाई कौन सी वैकेंसी कब खुलने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सारी बातें बताते हैं उसमें भी, वो भी बहुत लाभदायक प्रोग्राम आता है अपना युवाणी का सर।
1: एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका प्रोग्राम आता है हमारे रेडियो से?
0: बिल्कुल आता है सर, अंतिम रविवार को आता है, महीने के अंतिम रविवार को इसका प्रोग्राम आता है, तो पूरा हम उसको भी सुन
1: मन की बात वो हमारे आकाशवाणी का एक अच्छा बिल्कुल और पूरे हिंदुस्तान में। और गोपाल जी हम आपको ये बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम है आप हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप है हमारा एक मोबाइल पे, उस पर आप कहीं भी बैठे हो, चाहे आप विदेश में बैठे हो चाहे आप कहीं बैठे हो, वो प्रोग्राम आप ऐप डाउनलोड करके हमारे झालावाड़ रेडियो डाउनलोड करेंगे वो आप सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आजकल के तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है सर, तो
1: गोपाल जी अब हमारे श्रोताओं को आप चलते चलते ये बता दें कि तो गोपाल जी आपने हमें आपका इतना कीमती समय आप

0: का जो आप व्यवसायी हैं, इतना कीमती समय दिया यहाँ आने के लिए और आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना आपने समय दिया आप, क्योंकि आप व्यवसायी हैं, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा संक्षिप्त में आप कह दें।
1: मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, 90 साल पूरे हुए आकाशवाणी के, मैं तो ये मालिक से यही दुआ करूंगा, 90 क्या 101 तो हो ही जाएगा, सेंचुरी लगी जाएगी, इसके बाद मैं तो और चाहूंगा कि 180 साल जिए आकाशवाणी, और तरक्की करे बढ़िया। और अपना नया साल आने वाला है सर, इसमें सभी को मंगलमय हो, सबके लिए बढ़िया हो, मैं यही भावना रखता हूँ सर।
0: बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद गोपाल जी आपका, बहुत बहुत
1: थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, आपने इतना बड़ा मुझे आकाशवाणी बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रहूंगा आपका।
2: ऑल इंडिया रेडियो पर मिशन 90, इसका मतलब दोस्तों कि 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे अभियान, विशेष कार्यक्रम और उत्सवों से है जो सन 2025 में पूरी हुई है। ये सेवा सांस्कृतिक विरासत, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ भारत को जोड़ने की यात्रा का जश्न मनाता है, जिसमें पुरानी यादों को ताजा करने और भविष्य की ओर देखने पर जोर दिया जाए जिसमें पुरानी यादों को ताजा करने और भविष्य की ओर देखने पर जोर दिया गया है साथ ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य को दोहराया गया है। दोस्तों मिशन 90 के जो मेन या मुख्य पहलू हैं, उसका ऐतिहासिक महत्व हम आपको बताएं। 8 जून सन 1936 को भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था और सन 2025 में इसने अपने पूरे दो साल, सन 2025 में इसके पूरे 90 साल हो जाएंगे। सांस्कृतिक उत्सव, इस अवसर पर देश भर में संगीत कार्यक्रम, विशेष प्रसारण और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों ने भी भाग लिया। सूचना और शिक्षा, ये मिशन शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों पर जोर देते हुए आम आदमी की आवाज बनने और समाज के उत्थान के लिए सूचना और मनोरंजन प्रदान करने के लिए उनको एक लक्ष्य देता है। इसमें हम पुरानी यादें भी करते हैं, धरती को आकाश पुकारे जैसे पुराने कार्यक्रमों और गानों के माध्यम से लोगों ने अपनी यादों को साझा किया और रेडियो के प्रभाव को याद किया और ये पहलू जुड़ाव और एकता को भी बताता है। आकाशवाणी ने मन की बात जैसे कार्यक्रमों और न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से देश के कोने कोने और विदेशों में भी लोगों को एक साथ जोड़ने का काम जारी रखा है। अगर हम संक्षेप में ये कहें कि मिशन 90 या मिशन 90 केवल एक वर्षगांठ नहीं बल्कि देश के विकास में रेडियो के योगदान और भविष्य के लिए उसकी प्रतिबद्धता का एक व्यापक उत्सव है। दोस्तों 90 साल से जब आकाशवाणी शुरू होता है तो एक धुन सुनते आ रहे हैं, वो धुन हम आकाशवाणी बोलते हैं सिग्नेचर ट्यून। हम आपको उसके बारे में कुछ बताते चलें कि ऑल इंडिया रेडियो पर 90 सालों तक आकाशवाणी की एक आइकॉनिक धुन आप सुनते आ रहे हैं। इसके जो धुन कंपोज करी थी वो थे नाजी जर्मनी के एक रिफ्यूजी कंपोजर वाल्टर कफमैन, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कंपोजर वाल्टर कफमैन ने साल 1936 में वायलिन पर आकाशवाणी की आइकॉनिक धुन को तैयार किया जो राग शिवरंजनी पर आधारित थी। उस वक्त इंडिया में रिफ्यूजी के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा हुआ करती थी। नाजी जर्मनी से वो यहाँ आए और यहाँ ही रहने लगे। उस समय जब अंग्रेजों का ही यहाँ शासन था तो संगीत उनका भी था, यानी कि पश्चिमी संगीत भी था, लेकिन हमारे जो कंपोजर हैं वाल्टर कफमैन, उन्होंने ये जो धुन तैयार की थी। हम चलते चलते इस धुन को आपको फिर शेयर कर रहे हैं ताकि आप वापस वो सुन सकें।

दोस्तों, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जैसे लखनऊ, हैदराबाद, बनारस, कलकत्ता, तो कंपोजर ने इन शहरों के उस्ताद पंडितों से भारत के संगीत को सीखा। उसके बाद साल 1933 में ऑल इंडिया रेडियो जब बन रहा था, उस वक्त रेडियो को डायरेक्टर के रूप में एक शख्स की तलाश थी जो वेस्टर्न म्यूजिक को समझे और जिसे ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। बस फिर यहीं से वाल्टर कुफमैन ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर

बन गए। वर्ष 1956 में रेडियो को राष्ट्रीय प्रसारण के नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया और अगले साल इसकी सेवा में मनोरंजन का एक नया आयाम जुड़ गया, जिसके चलते रेडियो ने लोकप्रियता का एक नया शिखर छुआ। बात करें हम सन 1957 में, यहाँ लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ साथ विविध भारती सेवा शुरू की गई। और यहाँ हम आपको एक बात और बताते चलें कि रेडियो सिलोन जो लंका से चला करता था, उसी की कंपटीशन के लिए हमारे यहाँ हमने शुरू किया था रेडियो विविध भारती। वर्ष आया 1977, चेन्नई में FM का प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन सन 1994 के दशक में इसका लाइसेंस प्राइवेट चैनल के शुरू करने के लिए बांटा गया और आकाशवाणी ने सन 1990 में आंध्र प्रदेश के वारंगल में अपना 100वां रेडियो स्टेशन चालू किया और उसके बाद तो इसका तेजी से विस्तार हुआ और ओडिशा में बरहामपुर में भी 150वां, ओडिशा के बरहामपुर में इसका 150वां स्टेशन चालू किया। अब हमारे आकाशवाणी की जो आवाज है वो लगभग 100 देशों तक पहुंच रही है। आकाशवाणी की पहुंच न सिर्फ भारत के श्रोता वर्ग बल्कि अपनी सेवा दूसरे देशों के श्रोताओं को भी मुहैया कराता है। प्रतिदिन 100 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं देते हैं। आकाशवाणी बाहरी श्रोताओं को 27 भाषाओं में अपनी कवरेज दे रहा है। इन सेवाओं में 57 अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इन प्रसारणों में 15 विदेशी और 12 भारतीय कार्यक्रम शामिल है। तो धीरे धीरे हम दोस्तों 90 साल हमने पूरे किए हैं। आने वाला साल जो है अब धीरे धीरे 2026 में हम प्रवेश करना जा रहे हैं। तो हम हमारे केंद्र से झालावाड़ आकाशवाणी के पूरे परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं 2026 की। आपके लिए मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों अब है और अब वक्त है आप सभी के काम के सेगमेंट यानी कि करंट अफेयर्स का, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। दोस्तों हाल ही में मुद्राड़ी कर्नाटक को गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है।
1: 1 अप्रैल 2026 को नासा ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपना पहला फ्रूड यानी मानव युक्त मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
0: साथ ही भारत ने 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना 2026 शुरू की है, जिसमें लगभग 30 लाख अधिकारी शामिल हैं।
1: 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की।
0: एमएसएमई क्षेत्र के लिए
1: फिनलैंड ने यूरोप की पहली पूरी तरह से एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की, जो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है।
0: इसी के साथ श्रोताओं, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत तुर्की से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को भारत वापस लाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: साथ ही 15 मई 2026 को रक्षा मंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुट्टुपर्थी में भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे की आधारशिला रखी।

0: दोस्तों कभी आंखें बंद करके सोचिए, सूरज ढलते ही आपके चारों तरफ जो घना अंधेरा छा जाए, न मोबाइल चार्ज की जगह हो, न बच्चों के सामने खुली किताबें, और न ही रात को रसोई में माँ के हाथ सुरक्षित महसूस करें।
1: अंतिमा, ये कोई कहानी नहीं बल्कि कुछ साल पहले तक देश के करोड़ों घरों की यही कड़वी हकीकत थी, जहां मतलब सिर्फ सन्नाटा और ढीबरी या का वो धीमा धुआं उगलता हुआ उजाला हुआ करता था।
0: लेकिन शिल्पा, वक्त बदला। आज भारत के नक्शे पर वो अंधेरे कोने अब रोशनी से जगमगा रहे हैं, और इस बड़े बदलाव का नाम है सौभाग्य योजना, यानी
1: सहज बिजली योजना।
0: बिल्कुल
1: अंतिमा, जब ये योजना जमीन पर उतरी तो इसने सिर्फ घरों को ही नहीं, लोगों के नसीब को रोशन किया। सोचो, जिन गरीब परिवारों के लिए बिजली का कनेक्शन लेना एक दूर का सपना था, उन्हें सरकार ने बिल्कुल मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है।
0: मुफ्त कनेक्शन, आमतौर पर तो लोग सोचते हैं कि सरकारी दफ्तरों

0: के चक्कर काटने पड़ेंगे, कागजात का अंबार होगा। क्या इस योजना में भी ऐसा ही था?
1: अरे यही तो सबसे बड़ा चमत्कार था अंतिमा। सरकार जनता ये मौके पर ही वेरिफिकेशन हुआ और देखते ही देखते घर घर में बिजली का बल्ब जल उठा।
0: और शिल्पा, मुझे उन दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों में बसे गांवों की याद आती है, जहां बिजली के खंभे खड़े करना या तार खींचना नामुमकिन जैसा था। वहां इस योजना ने कैसे काम किया?
1: वहां विज्ञान और तकनीक काम आई, जहां ग्रिड पावर पैक पहुंचाए गए। जहां पर ग्रिड पावर पैक नहीं पहुंच पाया, वहां सौभाग्य योजना के तहत सोलर पावर पैक पहुंचाए गए।
0: बिल्कुल।
1: हर उस घर को सोलर पैनल से एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक पावर प्ले दिया गया, यानी कि प्रकृति की धूप से उनके घर रात में चमक रहे हैं।
0: वाह, ये सिर्फ एक योजना नहीं है शिल्पा, यह एक सामाजिक क्रांति है।
1: हाँ।
0: और बिजली आने से सबसे बड़ी बात, हमारे देश का भविष्य यानी हमारे बच्चे अब रात को बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और माँ बहनों को अब अंधेरे में चूल्हा फूंकने या जहरीले धुएं में सांस लेने की मजबूरी से आजादी मिली है।
0: तो दोस्तों, सौभाग्य योजना ने देश के कोने कोने से अंधेरे का नामो निशान मिटाने का संकल्प लिया है। अगर आपके संज्ञान में आज भी कोई ऐसा परिवार है जो इस लाभ से वंचित है, तो देर मत कीजिए, तुरंत अपने स्थानीय बिजली विभाग या ग्राम पंचायत से संपर्क करें,
1: क्योंकि रोशनी पर सबका हक है। और जब देश का हर घर रोशन होगा,
0: तभी तो आज मजबूत बनेगा हमारा इंडिया।

0: तो दोस्तों अब वक्त है, आप सभी जानते हैं, आज का इतिहास सेगमेंट का, क्योंकि हर दिन का होता है एक इतिहास, क्योंकि हर दिन होता है खास।
1: बिल्कुल, आज ही के दिन 1907 में शहीदे आजम भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था।
0: वहीं 1817 आध्यात्म विद्वान और धार्मिक नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
1: साथ ही 1940 में आज ही के दिन रिचर्ड और मैरिस मैकडोनाल्ड नाम के दो कार्यकर्ताओं ने मिलकर कैलिफोर्निया के सैन बर्नांडियो में छोटा सा रेस्तरां खोला था। आज फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन दुनिया की सबसे बड़ी चेन है। अवलोकन, मैकडोनाल्ड्स के 119 देशों में लगभग 35,000 स्टोक हैं।
0: वे तो बहुत बड़ी बात है। वहीं 2010 में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का निधन भी आज दिन हुआ था।
1: 1995 में आज ही के दिन एलिसन गारग्रिप्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी।
0: 1923 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिग्गज हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म हुआ था।
1: 1999 में आज ही के दिन कुवैत सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनाव में मताधिकार का हक प्रदान किया गया था।
0: वहीं बात की जाए 1892 की, तो भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल हरि विनायक पाटकर का आज जन्म हुआ था।
1: 2005 में आज ही के दिन 20 सालों के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा था।
0: 1965 की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने का जन्म भी आज ही हुआ था।
1: आज के दिन 1930 में पहली महिला एयर होस्टेस एलेन चर्च ने यूनाइटेड एयरलाइंस में काम संभाला था। तो साथियों, इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
0: उम्मीद है कि आपने में नए विचार,
1: नई प्रेरणा दी होगी
0: और कुछ नया सीखने का।
1: दोस्तों, युवा का मकसद सिर्फ नहीं है, युवात्मक सोच को आगे बढ़ाना है
0: और बीज बोना है। दोस्तों, जैसे भी कहा कि युवानी कार्यक्रम यही समाप्त होता है, समाप्त हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि युवानी का तो मतलब है ना कि हम आपसे बातें करें, आपकी बातें सुने, कुछ अपने किस्से आपको सुनाए और कुछ जो आप हमें किस्से सुनाते हैं वो हम श्रोताओं को सुनाए।
1: और दोस्तों, कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी से हमारी फिर से मुलाकात होगी अगली बार युवानी कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। मैं हूँ शिल्पा।
1: मैं हूँ अंतिमा।
0: अब आप सभी को हमारा

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवावाणी। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको शेष रहे कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:30 पर श्रोता सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 7 बजे हमारे किसान साथियों के लिए एक कार्यक्रम होगा, कृषक चौपाल। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर चर्चा होगी। ग्राम गुवाड़ी के आदित्य सिंह जी से ली गई बातचीत इसमें सुनवाई जाएगी। विषय रहेगा गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन की चुनौतियां व समाधान। इसी कार्यक्रम में फसल बीमा योजना पर जानकारी दी जाएगी और साथ ही किसान साथी सुनेंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई से अनुप्रसारित। समय रहेगा 7:30। फिल्म संगीत सुनिएगा हमारे केंद्र से एक बार फिर रात 8:15 पर।

8:45 का समय है समाचार संध्या के लिए। इसे हम दिल्ली से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन पर आधारित

कार्यक्रम सबरस होगा प्रतिदिन की तरह रात 9 बजे। यदि शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग

0: आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौत वीतिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए गीत से। फिल्म है द ग्रेट गैम्बलर। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने।

0: तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके।
1: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके।
0: मम्मा सर दर्द।

0: तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके।
1: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके?
0: मम्मा, सर दर्द।
2: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
4: सीता और गीता, इस फिल्म में आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया गीत। गीत और संगीत एक बार फिर आनंद बख्शी और राहुल देव बर्मन का है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपकी कसम, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में किशोर कुमार का साथ दे रही हैं लता मंगेशकर। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार से, फिल्म है प्यार के काबिल। इंदीवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी झालावड़ का चंद्रभागा चैनल है। 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुख्य समाचार। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहां से हर साल 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही करीब 2500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में भिवाड़ी में एलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 34 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और खैरथल तिजारा के कई विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले 2 सालों में 35 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना जल समझौते के काम में तेजी आने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सेमीकंडक्टर की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 12 साल में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगा

0: वाद क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
1: राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस चरण के लिए प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री करने, परिवारों की सही जानकारी दर्ज करने और सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का अभ्यास कराया गया। वहीं स्वगणना का विकल्प का आज आखिरी दिन है। स्वगणना के जरिए लोगों ने 1 मई से खुद अपने मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्त ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने वाली थी, जिसके लिए पिछले 2 माह से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में यूएई की भूमिका की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CBI नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का निजी विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र से जुड़ा मसला है। श्री शेखावत आज बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ

0: क्षेत्रों में लंबे समय तक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरिस्का प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेंपर नामक खतरनाक वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से बाघों में फैलता है। वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अब आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों के टीकाकरण और बाघों की विशेष निगरानी पर जोर दे रहा है। भरतपुर के मुक्केबाज यश कुमार ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यश कुमार जूनियर वर्ग में इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उनकी इस सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश की गतिविधियों से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आमजन को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर आज दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सीमावर्ती जिलों के लिए विभाग ने तेज गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प। और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना के दौरे की। हाल ही में श्री मीना ने जिले के भुसावर क्षेत्र के झरोटी गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लोक गायन और लोक नाट्य को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। डॉक्टर मीणा ने इस दौरे में दलपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से समयबद्ध क्रियान्वयन कर आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों का चयन कर गुणवत्तापूर्ण आवास बनवाने को कहा। साथ ही राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पिछले दिनों एक दिन के भरतपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने अपना

0: घर आश्रम में चार नए भवनों का लोकार्पण किया, साथ ही बालिका सदन का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय आश्रम तथा गौशाला की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने सेवा और संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षिक सुधारों के लिए स्वयं प्रेरित होकर ब्लॉक वार कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। जिला निष्पादन समिति की बैठक में उन्होंने मिड डे मील योजना की सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा, साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 428 कन्याओं के विवाह पर लगभग 1,96,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। कन्याओं के विवाह के लिए दी गई सहायता राशि से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में किशोरियों और महिलाओं को जानकारी दी गई। आठवें पोषण पखवाड़े का आयोजन भी पिछले दिनों जिले में हुआ। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित कर मातृ और शिशु पोषण के महत्व और एनीमिया से संबंधित जानकारियां दी गई। इसके अलावा मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर के श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के जलीय क्षेत्र में बीते दिनों सारस गणना की गई। मचानों पर बैठकर उद्यान के कार्मिकों, पर्यावरणविद, गाइड और पक्षी प्रेमियों ने इस काम में शिरकत की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला, हर साल 6 करोड़ चिप बनेला। राज्य में जनगणना 2027 रा तेत कालू मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून न ओजू वेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो चावेला। वो क्लस्टर बनावन रा काम माए करीब 1,200 करोड़ रुपया रो निवेश फैला। ई कारखाना माए हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जा सकेला। इस आगे करीब 2,500 लोगों ने नौकरी धंधा रा मौका मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज वर्चुअल तरीका इन रा काम री शुरुआत कीनी। वह ईसा गई 400 करोड़ रुपये भत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनाओं रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम रो उद्घाटन कीनो। इ मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार प्रदेश माए निवेश ने बढ़ावो देवन सारू लाडला 2 साल माए 35 नीतियां बनाई। वह दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने जोड़बा वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रातेत काम माए तेजी लावन री जानकारी दीनी। श्री शर्मा बतायो कि सरकार नौजवाना सारू पंचायत लेवल माथ अटल ज्ञान केंद्र खोलन माथ ध्यान दे रही है। इ मौके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि देश माए सेमी कंडक्टर बनावन रा 12 कारखाना लगाई चिया है और लाडला 12 साल माए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हल्का माए 6 गुणा बढ़ोतरी सागे। अब कुल उत्पादन

0: 13 लाख करोड़ रुपया लेवल के न पोग रियो है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इंडरा उत्पादन रो सबो सस्तो और असरदार विकल्प बतायो है। वे आज जयपुर माए राखी चेयर राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव माए बोल रहा हा। श्री शर्मा कहो कि पेट्रोल डीजल री बचत करण री सगला री जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लाडला दिना करी जी अपील पाछे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार सरकारी गाड़ियां सीमित तादाद में काम लेवण जुड़िया निर्देश जारी कीना है। वह कहो कि राजस्थान सूरज री रोशनी बिजली बनावण रा हलका माए देश माए अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कहो कि अक्षय ऊर्जा ने बधाओ देवण सारू राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू करी जी है। वह कहो कि सरकार साल 2030 ताई 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रो लेवल हासिल करण न ध्यान रखता थका काम कर रही है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रात काल मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो चावेला। 14 जून ताई चालन वाला इन काम सारू प्रगणक घर घर जार जानकारी भेड़ी करेला। इन सारू प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोणा सिखावण शिविरा रे जरिए प्रगणका ने जरूरी सिखावण दीरी जी। वाने मोबाइल ऐप रे जरिए जानकारियां रो इंदराज करण, परिवारा री जानकारी दर्ज करण और सर्वे रे दौरान राखी जावण वाली सावधानियां रे बारा माए अभ्यास कराई चियो। इन बीच स्वगणना करण रो आज आखिरी दिन है। स्वगणना रे जरिए लोग खुद 1 मई हमारा मकान और परिसंपत्तियां जुड़ी जानकारी ऑनलाइन तरीका दर्ज करा रहा है। जयपुर माए 23-25 मई ताई राखी जावन वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 टाल दी रिची है। कृषि आयुक्त रियोरू आज इं 12 मई हुक्म जारी करी चिया। ध्यान जोग है कि इन कार्यक्रम सारू लाडला 2 महीनाओं तैयारियां करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा अबुधाबी माए वठेरा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागे मुलाकात कीनी। इन दौरान ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों बीच कारोबार जुड़ी चर्चा करी ची। प्रधानमंत्री मोदी यूएई माथे हाल ही माए करी जे हमला री करड़ी निंदा कीनी। वह मुश्किल वगत में यूएई रा काम री सराहना करता थका यूएई सारू भारत री हिमायत री पुष्टि कीनी। श्री मोदी कहो कि तनातनी रा मौजूदा दौर में बातचीत और कूटनीति आगे चालन रो गेलो है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।

0: देश रा मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ने ओजू ली जावेला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली माए नीट यूजी परीक्षा रे बारा माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे बतायो के इन सारू 14 जून ताई एडमिशन कार्ड जारी कर दिया जावेला। श्री प्रधान कहो के 21 जून ने ओजू ली जावन वाली ई परीक्षा री कोई फीस नहीं ली जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहो के हाल ताई ओएमआर शीट माथे ली जा रही नीट परीक्षा आवता साल कंप्यूटर रे जरिए ली जावेला।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री कहो के विद्यार्थियों ने परीक्षा देवन सारू पसंद रो शहर चुनबारो मौको दियो चावेला। मंत्री कहो के सीबीआई नीट पेपर लीक मामला री पूरी जांच करेला। ध्यान जोग है के 3 मई ने भी नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक वेवन री शंका पाछे रद्द करती रिची ही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि स्वास्थ्य केवल इंसान रो निजी मुद्दों नहीं है बल्कि पूरा समाज और देश हूं जुड़ियो है। वे आज बांसवाड़ा जिला रा कुशलगढ़ में एक अस्पताल रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री आयुष्मान भारत योजना रो जिक्र करता थका कहो कि इन तहत 5 लाख रुपया ताई रा खर्च रो इलाज मुफ्त करावन रो सुबी तो दियो चावे है। मध्य प्रदेश रा कान्हा टाइगर रिजर्व माए बाघा री मौत रा मामला पाछे अलवर जिला रा सरिस्का टाइगर रिजर्व माए सावचेती बधा दिरीची है। प्रशासन कैनाइन डिस्टेम्पर नाम रा खतरनाक वायरस रा खतरा न ध्यान राखता थका निगरानी टीमा ने काम माथे लगा दीनी है। जानकारा ने मुजब ओ संक्रमण संक्रमित कुत्ता रे जरिए बाघा माए फैले है। सरिस्का टाइगर रिजर्व माए 52 बाघ है जाने संक्रमण बचावन सारू आरएसआरए रा कुत्ता रे टीका लगावन माथे जोर दियो चारियो है। भरतपुर रा मुक्केबाज यश कुमार उज्बेकिस्तान रा ताशकंद माए राखी जी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप माए सोना रो तमगो जीतियो है। वह 33 किलोग्राम भार वर्ग रा फाइनल मुकाबला माए कजाकिस्तान रा खिलाड़ी ने 4-1 हराया। यश कुमार ई चैंपियनशिप रा जूनियर वर्ग माए सोना रो तमगो जीतन वाला राजस्थान रा पहला मुक्केबाज बन गया है। अरबे मौसम प्रदेश रा कई हल्का माए लाड़ला 24 घंटा माए आंधी और बारिश वेवन रे कारण पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो। इनू गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। हालांकि हाल ही कई थोड़ा ऊंचो तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। दूजी कानी आज दौसा करौली सवाई माधोपुर और जयपुर जिला माए कठे कठे जोरदार बायरो बजन सागे हल्की बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब काल ओजू पारो चढ़बारा आसार है। महकमो सरहदी जिला सारू तेज गर्मी और लू बाबत चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले रहा सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ले रहा हो। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 राते कालू मकाना री लिस्ट बनावन रो काम करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा री बचत न इनरा उत्पादन रो सबू सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा

0: 21 जून ने ओजो भेला ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल।

कृषक चौपाल कार्यक्रम सुन वाला सभी किसान भाई बहना गताएं आपका साथी बजरंग लाल मीणा को घणो घणो राम राम। देखो भाई किसान साथियों, बात करा थोड़ी मौसम की, तो आप लोगों ने पतो छे कि दनादन गर्मी को असर दनादन ज़्यादा से ज़्यादा देखबा में आ रही छे। और देखो पढ़नी भी चाहिए, गर्मी पड़े छे तो एक असर कुछ तो फायदों भी हो छे, कुछ नुकसान भी हो छे। अगर फायदा की अगर आपने बात करा तो अगर अच्छी गर्मी पड़ेगी तो आपनी जो जमीन छे उनमें भी अच्छी तपत होगी, तो उसको कहें छे कि आपनी जो अपना जो किसान साथियों के देखो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हो छे। क्योंकि अगर आपनी जो जमीन छे वो अच्छी तौर तरीका से अगर तप जाओ छे तो उम आबा वाली जो अपन फसल छे वह भाव में तो उम अच्छो फायदो होगो, क्योंकि जितना भी जो कीटाणु छे वो सारा का सारा नष्ट हो जाओ छे। साथ ही किसान साथियों एक बात और आप लोगों से मुँह खबू छाऊ छू कि अबाणु ये टेम्प अपना जो बहुत सा किसान साथियान कहें छे कि खेता में देखो आग लगा दी और जे फसल का अवशेष जो बचा हुआ चा वहाँ के तय जला दिया। और किसान साथियों ने तो सोच ली कि मान तो खेत में जो कचरो छो साफ कर दियो और अब अच्छी कई जुताई करा और उनके बाद अच्छो फायदो मिल लगो। पर किसान साथियों देखो आपन ने तो यह बात सोच ली, लेकिन फसल अवशेष जलाबो अपना खेत में बहुत बुरी बात थी, क्योंकि अगर अब तय भी अपना जो जानवर छे वो चारों खाता। दूसरी बात अगर ऊँ अवशेषा के तय अगर आप अच्छा कल्टीवेटर से अगर आप उनके तय उम खेत में अगर मिला दें रोटावेटर से या सो अगर आप अवशेषा के तय मिट्टी में मिला दें तो ऊँ सुखाए जाए अपन के तय अच्छो फायदो मिले छे। पर किसान साथी ये बात के तय समझे कोई न और आग लगा लगा खेत ताम जला दिया, इसमें कई प्रकार का नुकसान हो जाओ साथियों। एक खेत में लगावा तो आपसी जो अपना आसपास का जो खेत रहे वहाँ में भी आग लग जाओ छे। तो किसान साथियों ऐसी गलती न करा, क्योंकि जो आपने जो फसल हो वाला जो इमें पौष्टिक जो तत्व रहे वो भी जड़ नष्ट हो जाओ छे, तो यह गलती अपन भूल भी अपन कथाएं न करनी चाहिए। साथ ही साथियों देखो ये गर्मी में आपने कहीं भी जाबो आबा को भी काम पड़े तो साथियों झक्कर सु जरूर बचा, क्योंकि झक्कर सु आपने अगर मान लियो कि कहीं भी चाला आला तो जरूर आप अगर छोटा साधन पर चाला तो हेलमेट लेर चाला स्यापी रहे तो स्यापी सु आपने सिर के ताएँ बांध भी सका चाह। तो ये सारी चीज़ा जो गर्मी सु बचाव की जे उनको ऊपर आपन के ताएँ ध्यान देनो छे। साथ ही किसान साथियों कार्यक्रम ने थोड़ी सी आज आप लोगों ने पतो छे कि आज आपनों जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी छे एक ताएँ भी बड़ी धूमधाम के साथ में मनाए जाओ छे। हर वर्ष 15 तारीख के तय बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाओ छे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्यों मनाया जाओ छे ये तो आप लोगों ने पतो छे किसान साथियों, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि परिवार दिना दिन छोटा से छोटा होता जा रहा है। दूसरी बात कि भाई सु भाई न समझे और तो ये

0: सारी बातें एक माध्यम से आपन के ताई समझनी चाहिए जी कि परिवार में आपस में हमेशा एक दूसरा के साथ में हिल मिले रहनी चाहिए जी। पर कहीं जी कि साथियों आपने एक छोटा सा लोभ के खातिर अपने भाई का भाई न समझा। दूसरी बात है कि परिवार में आस पड़ोस में जो भी कोई अपना जो भाई बंद रहे वहाँ से अच्छी तरीका से हिल मिले रहेगा, तो कभी भी अगर अपने सामने अगर कोई मुसीबत आ जाओ छे तो जरूर आपस में एक दूसरा को सहयोग करनी चाहिए जी। यूँ कोई ना कि मतलब आपने देख रहे चाहे उनकी साथ में तो बढ़िया हो रही चाहिए, ये बात गलत है। परिवार में पहले भी अपना जो अपना माता पिता दादा दादी सभी एक साथ रह जा जी में अगर कोई एक बुजुर्ग आदमी भी अगर कोई बात करे जो तो वो सारा परिवार का उनकी बात कथा ही माना जा। तो कर साथियों जरूर ध्यान रखाना क्योंकि आपन परिवार में रहा परिवार में कई प्रकार की जो आपने समस्याएं सामना आओ और उन समस्याओं को अगर आपन कहता है सामना करना चे तो जो परिवार रहे परिवार में जो काका बाबा दादा दादी यहाँ सभी को सहयोग हो वो जरूरी है। तो कर साथियों मारो तो आप लोग यही है कि सभी आपस में हिल मिल रहा और हिल मिल रहेगा जिंदगी में आया चा साथियों न तो कहीं लेर आया न कहीं लेर चला और आपन आपस में एक दूसरा सु प्रेम सुरा और या जो परिवार की जो प्रथा से उनको ताई मतलब जरूर ध्यान में रखाता हूँ या अपनों काम काज करा। और करसान साथियों देखो और भी आप लोगों के लेकर वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ ले रहे हैं चा और एक जानकारी यह भी करसान साथियों का अपन जो खेती बाड़ी को काम काज करा चाहे उनमें कई प्रकार का नफा नुकसान अपन के ताई सामने आवे चे और यह बात में बारी बारी सो आप लोगों के सामने कितनी बार कहाँ भी चाह कि भाई खेती से जुड़िया हुआ या जो अन्य जो धंधा है वहाँ पर भी आपन कथाएँ ध्यान देनी चाहिए जी। पशुपालन से और साथ ही साथ जो भेड़ बकरी पालन से मधुमक्खी पालन से यहाँ का बारे में भी आपने कितनी बार जो चर्चा करी पर कर साथियों आज एक ऐसी चर्चा आप लोगों के सामने में ले रहे हैं चाह मुर्गी पालन की। तो मुर्गी पालन भी करे पर ही गर्मी में देखो किसान साथियों बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाओ जे। तो मुर्गी पालन आपन करता हो या आपन कहीं कहीं बाताओं को पानी गर्मी में ध्यान रखाना तो यह जानकारी दे रहा है आदित्य सिंह गांव गुवाड़ी का। तो किसान साथियों सुनाइया बहुत ही बढ़िया जानकारी कि भाई मुर्गी पालन करा तो गर्मी में अपना जो मुर्गा मुर्गी चवा को कहीं प्रकार से ध्यान रखाना।
1: चौपाल कार्यक्रम में आज अपना साथ छे आदित्य सिंह जी ग्राम गुवाड़ी का रहवाला छे और यहाँ सो अपने बातचीत करेंगे कि गर्मी का मौसम मुर्गी पालन की चुनौतियाँ व समाधान ये विषय पे यहाँ सो बातचीत करेंगे। तो कृषक चौपाल कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत छे आपको। राम राम सा।
2: राम राम।
1: आदित्य जी आप कहीं काम काज करो छो जी भाई?
2: खेती करा जा।
1: खेती कितनी को होचा आपको?
2: खेती 20-22 बीघा जमीन छे आपने।
1: अच्छा 20-22 बीघा की जमीन आप करो जो अबानू जो गर्मी की गरी काई जुताई तो लगभग मैं करवा दूंगी। गर्मी की गरी काई जुताई का फायदा तो आपने जाना ही चाहे कि भाई जमीन अच्छी गरी काई जुताई करवा लें ताकि अच्छी तप जाओगी आप वाली फसल आपन बाऊंगा तो
2: आप वाली फसल बढ़िया होगी।
1: बढ़िया होगी तो देखो लगभग लगभग अपना जो जितना भी किसान भाई बहन जवान से बयान करवा ली पर यह बात बताओ आप कि भाई खेती के साथ साथ मुर्गी पालन आपनों जो बात वो कैसा विचार है कि भाई मुर्गी पालन करो जो आप
2: खेती
1: अच्छो फायदो छे?
2: खेती बाड़ी में तो कहीं छे कि आपने 6 महीना में पीसो आ रही छे
1: हाँ।
2: और मुर्गी पालन में आप
1: रोज को पीसो आ जाओ
2: आपके पास कमी ना होगी जहाँ अपना यूरिया खा तो कट्टो ला रहे जा कहीं भी ला रहे जा तो आपने पास इतना अंडा हो ही जाओ तो अपना सहयोग मिल जाओ चे।
1: और देखो कभी कभार जब ज्यादा जरूरत पड़ जाओ चे तो अपना जो मुर्गी चे या मुर्गा चे वहाँ कहता है बेच रही
2: बेचर
1: अच्छा फायदो ले
2: 1500 रुपया को मुर्गो बिक जाओगो तो अपने कमी ना होगी पीसा की।
1: अबानो ने जो मुर्गी पालन कर रखी छे तो इमें देसी पाल रखी छे या भाई फार्मी छे?
2: देसी छे मार पर
1: देसी देसी किस्म बढ़िया रहे
2: देसी किस्म बढ़िया रहे
1: तो लगभग कितना आपके पास ये होगा मुर्गा?
2: हमारे पास 200 मुर्गा मुर्गी है।
1: अच्छा 200 मुर्गा मुर्गी है तो अगर साल की अगर आपन बात करा मतलब कितनो का अपन के ताई फायदो हो जाओ जे?
2: साल को तो फायदो तो बढ़िया हो जाए पर हमारे पास रोज का 100-150 अंडा हो जाओ।
1: अच्छा
2: अब आर थोड़ी गर्मी में अंडा की थोड़ी कमी है।
1: अच्छा अबानो कमी है
2: हाँ।
1: तो अबानो जैसे मान लिया गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है आपनों भी देखो रो बिल्कुल दुष्प्रभाव पड़ रही है अपने ऊपर भी अपना जानवर पर भी पड़ रही है तो मुर्गा मुर्गी

0: कतो यूं ही ज्यादा शरीर में गर्मी रह चुकी के लिए कतनो तापमान होनी चाहो ताकि
1: 40 डिग्री सु कम रहनी चाहिए
0: तो ताकि अब आपने बताया कि भाई 40 डिग्री से कम तापमान रहनी चाहिए तो कशा पतो लागे था अपनी भाई मुर्गा मुर्गी आप इनको प्रभाव पड़ रहे हो
1: ये मैं कहे जग हाबा लाग जाओ जो मुर्गा मुर्गी चोंच खोल हापज और ठंडी जगह पर ज्यादा बैठ जहाँ पर पानी भर रखे तो वहाँ ज्यादा बैठ वा लाग जाओगा पतो चाल जाओ
0: भाई गर्मी को असर
1: होगी मुर्गा मुर्गी कम दाणो पानी कम कर दाणो कम खाओगा
0: अच्छा
1: तो पतो चाल जाओ
0: तो फिर आपने काय करनी चाहिए ताकि भाई गर्मी से अपना मुर्गा मुर्गियां अपन बचा सका जा
1: भाई गर्मी के लेकर तो कहे पिंजरा के ऊपर आप बोरी का टाट पटक दो वहीं गीला कर दो पानी को छिड़काव कर दो और सबसे बढ़िया चाहे आप कूलर लगा दो वहां का तो कूलर में बढ़िया बड़े ठंडा हो जाओ जो पूरे पिंजरा में बढ़िया
0: साफ सुथरी जगह
1: करो आप पिंजरा में भी थोड़ा छिड़काव कर दो पानी को और कूलर चला देगा आप तो कूलर कूलिंग सु बढ़िया हो जाओ शानदार काम हो जाए।
0: और दाना पानी की अगर बात करा तो काय खिलावा ताकि गर्मी से बचाव हो सके
1: दाना में तो काय जगह

0: और सबसे बढ़िया चाहे आप कूलर लगा दो वहां का, तो कूलर में बढ़िया बड़े ठंडाई हो जाओ पूरे पिंजरा में, बढ़िया
1: साफ सुथरी जगह,
0: साफ सुथरी जगह करो आप, पिंजरा में भी थोड़ा छिड़काव कर दो पानी को, और कूलर चला देगा आप तो कूलर कूलिंग सु बढ़िया हो जाओ, शानदार काम हो जाए।
1: और दाना पानी की अगर बात करा तो काय खिलावा ताकि ये गर्मी से बचाव हो सके?
0: दाना में तो काय जगह सबसे बेस्ट तो अपना मक्का ही है।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद में मक्का थोड़ी दलियो टाइप की कर दो, अब यार गर्मी में काई जे पचे भी कम जे, तो थोड़ो दड़वा दू ही है ना, तो उमे काई जे के पचवा में भी दिक्कत ना होगी,
1: मतलब बारीक करा
0: लो, बारीक करवा लो आप, और पानी के साथ आप पानी भी भर दो, और पानी के साथ साथ अगर आपके पास छाछ से अपना जानवर छह से गाय भी शहरी हो जाए तो छाछ को उत्पादन हो तो छाछ आप पिलाओ यहीं, तो छाछ में गाय जो बढ़िया ठंडाई रही हो जाए।
1: बहुत सारा जैसे मान लो खराब पानी खड्डा में पी रहा है तो
0: नहीं, वो तो साफ सफाई गर्मी में तो बहुत विशेष कर आप ही साफ सफाई तो रखानी पड़े।
1: अच्छा, ठंडो भी होनी चाहिए
0: पानी, ठंडो पानी होनी चाहिए, और रोज आप जैसे मान लो दो तीन बार चेंज भी करो पानी, क्योंकि बरे बरे गर्म हो जाओ,
1: गर्म हो जाओ सही तो छाछ ही पिलानी चाहिए, ठंडा
0: छाछ तो बहुत बढ़िया फायदा करे मुर्गा मुर्गिया।
1: बहुत सा अपना जो मुर्गी पालक भाई कभी करे जैसे मान लो प्याज प्याज कहता है काट रगर का,
0: प्याज प्याज गर्मी में प्याज ही बहुत ठंडाई करेगा।
1: अच्छा, यह तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई, और ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक के लिए
0: पौष्टिक बार गर्मी में तरबूज, तो तरबूज भी काट रहा आप तरबूज भी खिलाओ तो वो ठंडाई करेगा। ये चीज आज अब अपने पास अगर हरियो चारो जो बाड़ा में हरियो चारो रच को उसको कहीं भी बादो बार गर्मी में, तो वो भी आप काट टुकड़ा कर पटक दो आप, तो वो भी बढ़िया शानदार काम रहे हो। हरियो हरियो चारो भी बढ़िया खाओ, हाँ देसी हरियो चारो भी बढ़िया खाओगा,
1: क्योंकि कुतरन कर अगर डाल दिया तो उसे भी ज्यादा बढ़िया रहेगा।
0: हाँ,
1: तो अगर आपने छोटा बच्चा जैसे मान लिया अपन कहता है बढ़ोतरी करनी चाहिए तो उनके लिए कशु बढ़िया समय रह जाए?
0: आप बारिश में करो आप, ये
1: बारिश
0: लागती जैसे बारिश में अपना मतलब जुलाई अगस्त का महीना में आप बच्चा बिठाओ,
1: हाँ
0: तो अंडा भी बढ़िया मतलब बच्चा भी बढ़िया निकलेगा। और गर्मी में तो आप अंडा आप बिठा ही नहीं सका, पर गर्मी में तो खराब हो जाओ, तो बारिश ही बढ़िया रहेगी, तो मगाए सर्दी ताई वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाओगा।
1: अच्छा,
0: तो गर्मी में गाय सेन कर लेगा गर्मी हुआ,
1: तो अपन जैसे मान लो जो छोटा बच्चा होगा तो वहाँ को तो विशेष ध्यान रखना,
0: वहाँ को तो विशेष कूलर के पास ही रखनी पड़ेगा, वहाँ तो बिल्कुल वहाँ के लिए तो साफ सफाई को भी बढ़िया रखनी पड़ेगा और प्लस ठंडाई भी बढ़िया रखानी पड़ेगी वहाँ को।
1: हाँ ना, तो बेचारा वो तो ही
0: हाँ वो तो बहुत कमजोर रहे हो जाओ, और यहाँ में गए जो मुर्गा मुर्गी यहाँ में गर्मी भी ज्यादा रही हो जाए, तो उनके लिए अपनी ठंडाई को तो ध्यान रखा नहीं पड़ेगा।
1: जैसे आपने देसी मुर्गी पाल रहा है कि देसी मुर्गी की अपन बातचीत कर रहे हैं, चाहे तो देसी मुर्गी जब एक मुर्गी बट चे तो वह लगभग में कितना बच्चे पैदा कर ले?
0: जैसे आप 20 अंडा आप बिठाओगे तो 1500-1800 बच्चा तो निकाल ही देगी।
1: अच्छा, और जैसे मान लिया अपना देसी और फार्मी यहाँ में सबसे बड़ो अंतर
0: भाई? तो देसी बढ़िया लग गया, देसी में कहीं जे आप एक तो साफ सफाई की अति आवश्यकता न पड़े, गंदगी ज्यादा न हो, और फार्मी तो गंदगी ज्यादा हो जाए फार्मी में, देसी में इतनी वो होगी। उनके बाद में आप जानवर से अपने पास तो गोबर ओबर से तो गोबर भी खा लेगा, मतलब वो टाइम की दानों की आवश्यकता भी कम पड़े जाए देसी में।
1: अच्छा,
0: हाँ वो कचरो काटो भी खाता रहे हो जो बढ़िया घूमता रहेगा आप, और जहाँ जानवर आम वो जहाँ बारिश में चीचड़ा विचड़ा हो जाओ तो मुर्गा मुर्गी वहाँ भी खा जाओ।
1: अच्छा अच्छा, जानवर
0: आम तो और फायदा हो जाओ।
1: अच्छा, और जैसे मान लो कि जो बिक्री के लिए अगर आप बात करा तो यहाँ से बच जाओ?
0: हाँ, सर्दी में तो यहाँ से निकल जाओगा सारा।
1: अच्छा,
0: और गर्मी में जरूर थोड़ी सी परेशानी आओ, पर थोड़ी रेट कम करनी पड़े जाए अपनी, जहाँ सर्दी में तो 25 रुपया को भी निकल जाओ झंडो, और गर्मी में थोड़ी रेट कम करनी पड़ जाए।
1: अच्छा, गर्मी में मतलब रेट कम मिले?
0: हाँ, गर्मी में रेट कम करनी पड़ेगी आप,
1: तो लगभग जैसे मान लियो एक अगर आप मुर्गा की बात करा तो खात आए
0: वो 1000-1200-1500 रुपया को मुर्गो जाओ।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो घर बैठे बिक जाओ?
0: घर बैठे बिक जाओ मुर्गा, मुर्गो और मुर्गी तो घर बैठे ले जाओगा आप।
1: अच्छा,
0: खाबा वाला शौकीन तो बहुत जल्दी ले जाओ।
1: और देखो ये बहुत ही बढ़िया धंधो छे, और अपना जो किसान भाई बना अपनी जो बातचीत सुन रहा है वहां भी एक ही चीज पर न रहनी चाहिए,
0: साइड बिजनेस जरूरी रहे हो जाए, खेती से संबंध संबंधित बिजनेस ही यही है
1: ना।
0: मुर्गी पालन तो आप जहाँ मच्छी पालन कर रहे जो, बकरी पालन कर रहे जो, ये भी बढ़िया है, पर किसान के लिए सबसे लाभदायक चीज ही यही है।

0: मुर्गी पालन।
1: एक बात और अंत में आपसे या पूछ बचाऊ चुके वो अपना जो मुर्गी पालन भाई जी वहाँ नहीं गर्मी से बचाव के लिए काय मतलब जो जितना भी उपाय जी वो कर लेने चाहिए जी मतलब
0: हाँ बिल्कुल कूलर जरूरी है।
1: हाँ।
0: पिंजरों साफ करो आप और ठंडी जगह रखानो बोरिया का जो आपने ये टाटरी हो तो वो पिंजरा का आसपास लटका दो वहीं गीला कर दो। आधा पौन बीघा को बढ़िया बाड़ो बना रखे जो मैंने बढ़िया तो जाली आसपास बिल्ली रे हो जाए कुत्ता रे हो जाए यहाँ से बचाव के लिए आप आसपास एक बाई एक की जाली लगा दो तो ऊसू का कुत्ता बिल्ली अंदर ना होगा और मुर्गा मुर्गी बढ़िया घूमता रहेगा सुरक्षित रहेगा।
1: तो आपको तो यही खबर है की मतलब जहाँ भी अब गर्मी का टाइम पर विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए और ज्यादातर मतलब ठंडा मौसम रहनी चाहिए
0: ठंडो मौसम रखना जरूरी है
1: ताकि वहाँ में बीमारी न हो सके। और मान लो एक आदमी अगर कहीं कहीं मुर्गो या मुर्गी कोई कोई जानवर अगर आप मर जाओ तो काफी नुकसान हो जाओ तो आपने अति छोकी छोकी जानकारी किसान भाई भगना के लेकर दी अंत में सलाह का तौर पर कहीं का बचाओ
0: सलाह का तौर पर खेती बाड़ी के साथ साथ आप मुर्गी पालन भी करो जिम्मे कहीं जगह आपके पीसा की जो आपने बीच बीच में जरूरत पड़े जो खाद ला रहा जा बीज ला रहा जा
1: अगर
0: तो कहा अगर परिवार में भी आ गई अब आपने खेती में तो कहीं जगह चार महीना में छह महीना में पीसा होगा जिम्मे आपने रोज अपने पास पीसा की कमी न रहे रोज अंडा बिकेगा आपका और छह अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मुर्गो उर्गो निकाल दो तो मैं पास जेब में पीस हो रहे हो
1: सही बात बताया आपने। तो आपने अति छोकी छोकी जानकारियां मका किसान भाई बगना के लेकर दी और तो ही के लेकर आपके टाइम बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: राम राम राम।
2: जलवायु उपशमन और अनुकूलन यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना जैसे कि भोजन पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: उफ, ये तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके।
4: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके?
3: मम्मा, सर दर्द।
5: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
6: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भाई देखो किसान साथियों आपनु आपना जो मुर्गी पालक भाई ने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि भाई खेती के साथ साथ जो जत्ता भी आपना जो धंधा जे जो जुड़े हुआ जे वो कताई जरूर आपनों को ऊपर ध्यान देनी चाहिए क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप बैठा रहना चाहें खेती में कभी कभार कितनी प्रकार की जो नुकसान हो जाओ और अगर आपन दोहरा लाभ अगर आपन कताई लेनो तो उस अच्छी आपने कमाई हो जाओ। पशुपालन भी अपना जो किसान भाई बहन देखो करे भी और जे किसान साथी न करे वहाँ ने भी करनी चाहिए क्योंकि पशुपालन भी एक बहुत बढ़िया धंधो च साथ ही मधुमक्खी पालन च भेड़ बकरी भी अगर आप पाल सका चाह जब जाओ जब आप कहता है पीसो मिले जे तो ये शू कहे कि आप अच्छो अगर एक तरफ से अगर आप कहता है नुकसान हो जाओ तो दूसरी तरफ से फायदो भी हो जाओ चे। तो किसान साथियों ने जरूर ध्यान देनी चाहिए एक ही चीज़ पर निर्भर न रहनी चाहिए। किसान साथियों कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता हूँ या बात करा आज की जो अपनी जानकारी की बातें को विषय चे फसल बीमा योजना। किसान साथियों कितनी बार आप लोगों से भी माँ भी निवेदन करना चाह कि भाई आपन फसल में कितनी खूब मेहनत करे चाह अपने घर परिवार का पूरा सदस्य जुटिया रहे कि भाई खूब अच्छी मन और लगन सू और अपना जो

पीसा कोड़ी भी खूब लगावा चाह पर कहीं प्रकार का जो प्रकृति प्रकोप हो चू सो अपनी फसल नष्ट हो जाओ ची। यहीं बार भी गए साल आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं प्रकार का जो आंधी तूफान बारिश कितना है अपना जो किसान साथी की फसल नष्ट होगी और नष्ट होगा के बाद में किसान साथी हाथ मलते ही रह जाओ तो किसान साथियों अपनी जो फसल से अगर वो फसल को अगर समय समय पर अगर अपन बीमो करवा लिया चाह तो ऊँसो अपन कहता है अपनी जो नुकसान हो जे उनकी भरपाई हो जाओ जे तो किसान साथियों से निवेदन है कि भाई आवाली जो भी अपन फसल भावना तो उनको बीमो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो किसान साथी जरूर ये बात पर ध्यान जरूर देगा और किसान साथियों बातचीत खूब सारी होगी। और अब मन कर रही है कि एक बहुत ही बढ़िया प्यारो शोक लोकगीत आप लोगों के लेकर ले आया चाह कि प्यारो राजस्थान और इनका गायक कलाकार चाह धनराज रावल वह साथियों की आवाज़ में सुना यो प्यारो शोक लोकगीत।

तो देखो करसान साथियों, लोकगीत तो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया लागी होगो, प्यारू राजस्थान, और इनका गायक कलाकार चा धनराज रावल व साथियों की आवाज़ में। देखो राजस्थान की छवि तो बड़ी न्यारी लागे छे, क्योंकि यहाँ की जो रहन सहन छे, वेशभूषा छे, और यहाँ को जो खान पान छे, और यहाँ का जो गढ़ किला, ये देखकर मन अतनो मतलब पुलकित तो हो जाओ छे के वारे राजस्थान। तो करसान साथियों, लोकगीत भी बढ़िया ही लागू, आप लोगों ने भी बढ़िया ही लागू होगो, और मन तो देखो बढ़िया लागू छे। अब आपकी तो आप ही जानो, और अब करसान साथियों मन तो घणो करे कि और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ और भी लोकगीत आप लोगों के ताएँ मां सुनावा। पर करसान साथियों देखो समय को अभाव रहे छे, और असो ही आपना जो कृषक चौपाल कार्यक्रम को अब समय समाप्त तो होबा मच। तो आपका साथी बजरंग लाल मीणा के ताएँ दिवा गया, फिर मलंगा, राम राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल FM 103.2 MHz पर। यह प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है। आइए

साथियों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से कार्यक्रम जयमाला में। याराना फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा राजेश रोशन का संगीत।

0: वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका बुखार।
1: ले ले, नाक बंद करके एकदम पी जा। अरे दवा तो कड़वी हो गई है, तू क्या जाने तेरी बीमारी से हम कितने परेशान हैं। ले बेटा सड़ाक से पी जा। अरे शाबाश, पी जा पी जा।
2: ओहो माँ, तुम लोग मुझे घर में रहने दोगे भी या नहीं? मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे ना कभी बुखार था, ना भय, और ना ही कभी भविष्य में होगा, फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो।
1: सो तो मैं भी कहूँ बेटा कि बुखार हो तेरे दुश्मनों को।
2: हाँ।
1: पर तू ये काढ़ा तो पी ले मेरे बच्चे, देखियो एक ही खुराक में बुखार आधा रह जाएगा। अरे हर शरण वैद्य जी से दवा लाए हूँ तेरे लिए, कोई अरे गहरे नत्थु खैरे की दवा थोड़ी। ले बेटा पी जा।
2: अब चाहे इस दवा को स्वर्गीय धनवंतरी जी ने खुद ही तैयार क्यों ना किया हो, माँ मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। इतनी कड़वी जहर दवा को भला कोई शरीफ आदमी पी सकता है? तुम जरा चक्कर देखो, एक बूंद जिस्म का एक एक रुआ खड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम अशोक नहीं।
1: हाय हाय, बिल्कुल वकीलों की तरह बहस करे तू तो। भगवान मेरे बच्चे को 100 बरस की उम्र देवे, कलेक्टर बनाए इसे। ले बेटा अब तो पी ले इसे, है ही कितना, अरे मुश्किल से मासा दो मासा होगा।
2: तुम भी कमाल करती हो माँ, पूरे पाव भर का ग्लास भरा हुआ इस काढ़े से, और तुम, और फिर चाहे ये रत्ती भर ही क्यों ना हो, मेरे बस का नहीं है इसे पीना।
1: अरे मेरी नहीं तो अपने बाबूजी की परेशानी का तो ख्याल कर। अरे देखो 3 दिन से डॉक्टर बैदों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी तो बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान।
2: क्या कहा? मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ? अरे भाई मुझे लेटाया गया है बिस्तर पर जबरदस्ती। हे भगवान, कैसी बुरी घड़ी में मैंने थर्मामीटर मुंह में लगवाया था।
3: इसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। अशोक की माँ, बाई दीवे मैं कहता हूँ तुम रोगी से बहस करती क्यों?
2: बाबूजी आप माँ से कुछ भी कहिए लेकिन मुझे रोगी ना कहिए।
3: वाह बरखुरदार वाह, तुम भी अपनी कसम के एक ही हो, 72 घंटों से चारपाई पकड़ी हुई है
2: और मैं इस वक्त सैकड़ों दंड पेल सकता हूँ, 1000 उठक बैठक लगा सकता हूँ, जिम्नास्टिक कर सकता हूँ, 1 मील तक दौड़ सकता हूँ और एक सड़मुसड़ से कुश्ती लड़कर उसे पछाड़ भी सकता हूँ,
3: लेकिन 3 दिन हो गए एक प्याला काढ़ा भी ना पी सके।
1: हाय हाय, वो बेचारा अभी अभी पीने ही लगा था कि तुमने उसे फिर छेड़ दिया। ले अशोक नाक बंद कर बेटे।
2: मैं कहता हूँ इस काढ़े को पीने से मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। बाबूजी आखिर आप लोग मेरे माँ बाप होकर भी क्यों नहीं समझते?
3: देखो अशोक, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो।
2: मैं
3: भाई दीदी, तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपने इकलौते बच्चे को बीमार देखकर माँ बाप के दिल पर क्या बीतती
2: है।
3: भाई दीदी हम मानते हैं कि दवा कड़वी है, लेकिन कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं होती जो पीना जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अचानक ही हमारी कनपट्टी पर भाई दीदी फुंसी पैदा हो गई।
1: और बेटा तेरे बाबूजी ने फुंसी की कोई चिंता न करके 1 महीने तक रोज नीम के पत्तों का आधा से रस पिया था, जिससे खून में कोई विकार न रहे
2: जी।
3: और बेटे हमारे इस काम से हमारी सेहत सुधर गई, साथ ही साथ घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे
2: जी।
3: भाई देव अशोक तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई उपदेश दे रहे हैं।
2: नहीं, नहीं, कहा
3: भाई, भाई तुम तो हमारे समझदार बेटे हो। अशोक की माँ
1: जी,
3: ये गिलास तुम अशोक के हाथ में दे दो, वो खुद पिएगा काढ़ा। भाई हाँ, तो बेटा देखो हम आंखें बंद कर लेते हैं और तुम पी जाओ, हम 1 2 3 कहते हैं, 1 2 3 पी जाओ बेटा पी जाओ। हाँ हाँ, एक सांस में पी जाओ। हाँ मैं कहता हूँ पी जाओ।
1: हाय हाय, तुम तो बुरी तरह डांटने लगे बच्चे को।
2: देखो
1: जा पहले चेहरे का पसीना तो सुखाओ।
3: मैं कहता हूँ अशोक की माँ,
1: कहते हो तो कहते रहो, 3 दिन से बराबर बुखार है उसे, कमजोरी बढ़ गई है, आखिर एक सांस में कैसे पी जाएगा इतना सारा काढ़ा। ले बेटे, बेटे अशोक।
2: हाँ। मैं एक सांस में 2 सेर दूध पी सकता हूँ, 5 कच्चे अमरूद खा सकता हूँ, 2 दर्जन केले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि कड़वे करेले खा सकता हूँ, पर एक प्याला काढ़ा नहीं पी सकते।
3: बाबूजी
2: ये नीम के पत्तों से कहीं ज्यादा कड़वा है।
3: कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें काढ़ा पिलाकर ही दम लेंगे।
2: भगवान,
1: बेटा ये काढ़ा मैं 15 दिन तक पी चुकी हूँ। अरे मुझे भी तेरी तरह 100 बुखार था,
3: ना कमबख्त बढ़ने का नाम लेता था ना घटने का। 5 दिन बाद तुम्हारी माँ को जब ये काढ़ा दिया गया
1: तो कहीं जाके मेरा बुखार उतरा। हाय वैद्य जी, भगवान उन्हें 100 बरस की उम्र।
3: क्या भक्ति हो जी, वैद्य जी पहले 102 साल के हैं। अच्छा तो हाँ अशोक की माँ, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़े लेते हैं
1: जी।
3: तुम बिजली की तेजी से अशोक के मुंह में काढ़ा डाल देना।
1: नहीं जी, हाथ मैं पकड़ती हूँ।
3: तुम्हारा बेटा 25 साल का नौजवान है अशोक की माँ, एक झटके में ये दोनों हाथ छुड़ा लेगा।
2: आप लोग चिंता ना करें,

0: मैं चुपचाप लेटा रहूंगा।
1: और फिर तुम घंटों तक मुंह नहीं खोलोगे।
0: बाबूजी, बाबूजी, आप मुझे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखला देते? ना हो तो वैद्य जी से कहिए वो आकर मुझे देख तो ले। पता नहीं उन्होंने मेरी नब्ज देखे बगैर कैसे काढ़ा दे दिया।
1: बेटे, तुम्हारी जिद को देखते हुए भाई जी, मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा
0: जी।
1: बस वो आते ही होंगे 5-7 मिनट में, लेकिन उनके आने से पहले हम तुम्हें इस अक्सीर दवा की एक खुराक जरूर पिलाना चाहते हैं।
0: नहीं,
1: हाँ, अशोक की माँ
2: जी।
1: अच्छा तो देखो, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और तुम
2: चलो, मैं दवा उड़े लूंगी।
0: प्रभु,
2: जरा एक सेकंड के लिए ये गिलास तो पकड़ना अशोक के बाबू।
1: लाओ, दे दो। हैं? मुझे तो तुम्हारा हाथ भी कुछ गर्म महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें तो
2: क्या भगते हो जी?
0: बहुत अच्छे।
2: अरे अभी अभी तो मैं कढ़ी चावल खा के उठी हूँ और सुबह से अब तक कसाले का काम करती रही हूँ। मुझे भला कहीं बुखार हो सकता है?
1: अरे बातों का बुखार से क्या ताल्लुक है? तुम फौरन थर्मामीटर लगाओ।
2: कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है अशोक के बापू? अरे मुझे फिर भूख लग रही है, और बल्कि मुझे तो अभी रामू की माँ के घर भी जाना है।
0: फिर भी थर्मामीटर लगाने में क्या हर्ज है माँ? हम बुखार ना हो तो ना सही, बाबूजी की शंका तो दूर हो जाएगी। ये लो थर्मामीटर।
2: ओफो।
1: देखो बेटे, तुमने जरा अपनी माँ की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो तुम्हें भी टेंशन हो गई, यानी तुम्हारी भी चिंता बढ़ गई।
0: चिंता की तो बात है ही बाबूजी।
1: यही हाल हमारा भी है अशोक बेटा, तुम्हारे लिए हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत चिंतित हैं।
0: आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं गलत था।
1: अच्छा तो बच्चे, अब तुम चुपचाप काढ़ा पी लो।
0: पी तो लूंगा बाबूजी, पर आपको एक कष्ट दूंगा।
1: हाँ हाँ बेटे, जरूर कहो कहो।
0: बाबूजी, मैं सीधा लेटा रहूंगा और किसी ना किसी तरह मुंह भी खोल लूंगा, बस आप एकदम खुराक मेरे गले में पहुंचा दीजिए।
1: शाबाश बेटा, शाबाश। एक सेकंड ठहरो।
0: क्यों?
1: मैं जरा थर्मामीटर देख लूंगा।
0: हाँ जी।
1: लाना जी, जरा देना इधर थर्मामीटर।
2: ये लो।
1: देखा,
0: देखा।
1: मैं पहले का कहता था अशोक की माँ तुम्हें भी बुखार है, 100 डिग्री, ठीक अशोक की तरह।
0: क्या मालूम बाबूजी, माँ को भी 2-3 दिन से बुखार रहा हो।
1: हो सकता है,
0: हो सकता है।
2: मैं कहती हूँ
1: तुम्हें अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें लेटने की जरूरत।
0: हाँ माँ।
1: संतो, और संतो, अबे संतो कहाँ मर गया तू? क्यों जी, कहाँ चले गए थे तुम?
3: डाकघर गया था बाबूजी, अशोक बाबू ने 3 पोस्टकार्ड और 5।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम इस चारपाई पर एक बिछौना अशोक की माताजी के लिए लगा दो।
2: जल्दी,
1: बुखार है और ये थर्मामीटर धोला।
2: क्या मुसीबत है।
0: बाबूजी, अब इस काढ़े की 2 खुराक बना लीजिए, ये खुराक माँ को भी तो चाहिए।
1: तुम ठीक कहते हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो। बाय द वे, ये लो अशोक की माँ, लो। पहले तुम पी जाओ दवा,
0: जल्दी
1: तुम्हें देखकर अशोक की हिम्मत भी खुल जाएगी।
2: हाँ, अरे मैं नहीं पीऊंगी ये कड़वा काढ़ा, मेरा जी पहले से ही मितला रहा है।
1: वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है?
3: बिस्तर तैयार है बाबूजी, और ये लीजिए थर्मामीटर।
1: हाँ, अशोक की माँ, तुम तो पहले भी इस काढ़े को 15 दिन पी चुकी हो।
0: हाँ, तुम्हें
1: पी लो, उधर तुम्हारा बुखार उतरा, इधर मेरी और अशोक की टेंशन यानी चिंता एकदम दूर हो जाएगी।
2: अजी, नाली में फेंकिए इस काढ़े को, भाग में बुखार होगा तो होके ही रहेगा। वैजी का काढ़ा तकदीर के लिखे को थोड़ा ही बदल सकता है।
1: देखो अशोक की माँ, अब तुम्हें भी जबरदस्ती पिलाया जाएगा काढ़ा। दवा के मामले में मरीज की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
0: गुस्सा ना कीजिए बाबूजी, लाइए पहले मुझे पिला दीजिए दवा, माँ अपने आप पी लेंगी बाद में।
1: जियो बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा तो तुम सीधे लेट जाओ, मैं तुम्हारा मुंह खोलकर अपने आप दवा डालता हूँ।
0: जी
1: हाँ, इस तरह बस बस, अब हिलो डुलो मत।
0: जी
1: हाँ हाँ हाँ, मुंह खोलो, खोलो मुंह, खोलो।
0: ठहरी बाबूजी,
1: क्या बात है बेटे?
0: बाबूजी, मुझे आपका हाथ भी गर्म लगता है, कहीं आपको तो।
1: अरे पगले, धूप में चल फिर कर आया हूँ ना, कोई बर्फखाने में तो बैठा नहीं था। और फिर मेरे चेहरे की सुर्खी क्यों नहीं देखते हो तुम?
2: सुर्खी बुखार से भी बढ़ जाती है कभी कभी अशोक के बाबू, थर्मामीटर तो पास में पड़ा है, लगा के क्यों नहीं देख लेते?
0: ये लीजिए बाबूजी थर्मामीटर, भगवान करे आपको बुखार हो।
2: बेटा अशोक, बैद जी मुझे बता रहे थे कि आजकल भूत के बुखार बहुत फैल रहे हैं।
0: माँ, भूत नहीं, वैद्य जी छूत की बीमारियों का जिक्र कर रहे होंगे।
2: बुखार भी तो बीमारी ही होती है बेटा।
0: तब तो ये काढ़ा पीना ही होगा माँ तुम्हें।
2: अरे मेरी जिंदगी का क्या है बेटा, जिंदगी तो तुम लोगों की चाहिए।
0: लाइए बाबूजी, मुझे दीजिए थर्मामीटर। अरे आपको भी बुखार है, 100 डिग्री, मेरी और माँ की तरह।
2: सच? संतो,
0: संतो,
2: ओ संतो,
0: ओ संतो,
2: अरे इस पलंग पर एक बिस्तर

0: बिछा दे,
1: एक और,
0: और एक खाली प्याला भी लेते आना
1: जल्दी।
2: जी अशोक।
0: हाँ अशोक।
3: हाँ जी माँ।
0: अब इस दवा के तीन हिस्से कर दे।
3: जी अभी करता हूँ।
0: एक खुराक तेरे बाबूजी पिएंगे।
4: भाई आज मेरे बुखार का पहला दिन है, आज मेरा दवा पीना ठीक नहीं।
3: कहाँ जाने बाबूजी, आपको भी मेरी और माँ की तरह कल परसों से बुखार हो।
2: बिस्तर लगा दिया है बीबी जी।
0: अच्छा,
2: ये लीजिए प्याली।
0: अशोक बेटा, सबसे पहले अपने बाबूजी को एक खुराक दे।
3: सबसे पहले।
0: अरे इनके ही दम से तो गृहस्थी चलती है हमारी।
4: मैं आज बुखार के पहले दिन दवा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये मेरा उसूल है।
0: लेकिन नीम के पत्तों का रस तो तुमने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारी कनपट्टी पर फूसी।
4: ठीक है, लेकिन ये काढ़ा है।
5: नमस्कार कृपा शंकर जी।
4: आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपकी सब जरूरत थी। देखिए मुझे और अशोक की माँ को भी सौ बुखार हो गया है, और अशोक के बारे में तो मैंने आपको टेलीफोन पर बता ही दिया था।
3: लेकिन डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत लगती है, दौड़ने भागने को जी करता है, और बिस्तर सबसे बुरा लगता है।
5: लाइए नब्ज दिखाइए।
0: डॉक्टर साहब मैंने थोड़ी देर पहले कढ़ी चावल खाए थे, अब फिर भूख लग रही है,

0: ये तशरीफ लाइए, आपकी सख्त जरूरत थी। देखिए मुझे और अशोक की माँ को भी सौ बुखार हो गया है और अशोक के बारे में तो मैंने आपको टेलीफोन पर बता ही दिया था।
1: लेकिन डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत लगती है, दौड़ने भागने को जी करता है और बिस्तर सबसे बुरा लगता है।
2: लाइए नब्ज दिखाइए।
3: डॉक्टर साहब मैंने थोड़ी देर पहले कढ़ी चावल खाए थे, अब फिर भूख लग रही है, बदन में फुर्ती महसूस कर रही हूँ।
2: आप भी नब्ज दिखाइए।
0: मैं बिल्कुल चंगा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए फिर भी मुझे सौ बुखार है।
2: आप भी लाइए अपनी नब्ज।
3: क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश हैं।
2: कोई खास बात नहीं कृपा शंकर जी, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ बेकार ही आया, आपका थर्मामीटर गलत है। जी हाँ, इसको लाख बार झटकिए लेकिन इसका पारा ना तो 100 डिग्री से आगे बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है।

बुखार। अभी आपने वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका सुनी। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

0: मच्छरों से होगा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: तो मच्छर पैदा हो जाओ और मच्छर में अगर
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
3: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
7: श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
0: अगर साफ सफाई न रहेगी तो मच्छर इकट्ठा हो जाएगा और वह प्रजनन करेगा।
7: कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं सुदेश भोंसले और कविता कृष्णमूर्ति का गाया गीत। फिल्म है हम। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है शराबी फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा है अनजान ने, संगीत बप्पी लहरी का है।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है बागवा फिल्म से। आवाज है अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने।

बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: आकाशवाणी झालावाड़ से आइए सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध

0: मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: All the BRICS members and partner countries.
2: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री

0: कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। यह निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अनुराधा पौडवाल की गई इस भक्ति रचना के साथ।

0: जी मैं एक सीटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सीटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सीटी।
1: कार्यक्रम के अंत में यह है अदनान सामी।

अदनान सामी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सब रस अब समाप्त हुआ। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।